آپ کی سماعتوں سے ٹکراتی یہ آواز یو سی پی کی دنیا ایف ایم 92.6۔

और वही तो है जिसने पानी से आदमी पैदा किया, फिर उसको साहिब नसब और साहिब कराबत दामादी बनाया, और तुम्हारा परवरदिगार हर तरह की कुदरत रखता है।

0: फिरौन ने कहा, क्या इससे पहले कि मैं तुमको इजाजत दूं तुम उस पर ईमान ले आए? बेशक ये तुम्हारा बड़ा है जिसने तुमको जादू सिखाया है, सो अनकरीब तुम उसका अंजाम मालूम कर लोगे कि मैं तुम्हारे हाथ और पांव अतराफ मुखालिफ से काट दूंगा और तुम सबको सूली पर चढ़ा दूंगा।
1: قَالُوا لَا ضَيْرَ إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ
0: उन्होंने कहा, कुछ नुकसान की बात नहीं, हम अपने परवरदिगार की तरफ लौट जाने वाले हैं।

0: क्या उनके लिए ये सनद नहीं है कि उलमाए बनी इसराइल इस बात को जानते हैं।
1: वलौ नज़लनाहु अला बादिल आजमीन,
0: और अगर हम इसको किसी गैर अहले ज़बान पर उतारते,
1: फ़क़रअहू अलैहिम मा कानू बिही मुमिनीन,
0: और वो इसे उन लोगों को पढ़कर सुनाता तो ये इसे कभी न मानते।
1: كذلك سلكناه في قلوب المجرمين,
0: इसी तरह हमने इनकार को गुनाहगारों के दिलों में दाखिल कर दिया।
1: لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم,
0: वो जब तक दर्द देने वाला अजाब न देख लें उसको नहीं मानेंगे।
1: فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون,
0: वो उन पर नागहां आवाक़े होगा और उन्हें खबर भी न होगी।
1: फयकूलू हल नहनु मुनज़रून,
0: उस वक्त कहेंगे क्या हमें मोहलत मिलेगी।
1: अफबिअज़ाबिना यस्तअजिलून,
0: तो क्या ये हमारे अज़ाब को जल्दी तलब कर रहे हैं।
1: अफरअयता इन मत्तअनाहुम सिनीन,
0: भला देखो तो अगर हम उनको बरसों फायदे देते रहें।
1: ثم جاءهم ما كانوا يوعدون,
0: फिर उन पर वो अजाब आवाके हो जिसका उनसे वादा किया जाता है।
1: ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون,
0: तो जो फायदे ये उठाते रहे उनके किस काम आएंगे।
1: وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون,
0: और हमने कोई बस्ती हलाक नहीं की मगर उसके लिए नसीहत करने वाले पहले भेज देते थे। ताकि नसीहत कर दें और हम जालिम नहीं हैं।
1: वमा तनज़लत बिहि शयातीन,
0: और इस कुरान को शैतान लेकर नाजिल नहीं हुए।
1: वमा यंबगी लहुम वमा यस्तطيعون,
0: ये काम ना तो उनको सजावार है और ना वो इसकी ताकत रखते हैं।
1: इन्नहुम अनिस्समअ लमअज़ूलून,
0: वो आसमानी बातों के सुनने के मकामात से अलग कर दिए गए हैं।
1: फला तदउ मअ अल्लाह इलाहन आखर फतकून मिन अल मुअज़्ज़बीन,
0: तो खुदा के सिवा किसी और माबूद को मत पुकारना वरना तुमको अजाब दिया जाएगा।
1: وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ,
0: और अपने करीब के रिश्तेदारों को डर सुना दो।
1: وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ,
0: और जो मोमिन तुम्हारे पैरों हो गए हैं उनसे बतावाज़ो पेश आओ।
1: فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ,
0: फिर अगर लोग तुम्हारी नाफरमानी करें तो कह दो कि मैं तुम्हारे आमाल से बेताल्लुक हूँ।
1: वतवक्कल अलल अज़ीज़िर रहीम,
0: और खुदाए गालिब और मेहरबान पर भरोसा रखो।
1: अल्लज़ी यराका हीन तक़ूम,
0: जो तुमको जब तुम तहज्जुद के वक्त उठते हो देखता है।
1: वतक़ल्लुबका फिस्साजिदीन,
0: और नमाजियों में तुम्हारे फिरने को भी।
1: इन्नहु हुवस समीउल अलीम,
0: बेशक वो सुनने वाला और जानने वाला है।
1: हल उनब्बिउकुम अला मन तनज़्ज़लुश शयातीन,
0: अच्छा मैं तुम्हें बताऊं कि शैतान किस पर उतरते हैं।
1: तनज़्ज़लु अला कुल्लि अफ़ाकिन अथीम,
0: हर झूठे गुनाहगार पर उतरते हैं।
1: يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ,
0: जो सुनी हुई बात उसके कान में ला डालते हैं और वो अक्सर झूठे हैं।
1: وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمْ

अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि हुदहुद आ मौजूद हुआ और कहने लगा कि मुझे एक ऐसी चीज मालूम हुई है जिसकी आपको खबर नहीं, और मैं आपके पास शहर सबा से एक यकीनी खबर लेकर आया हूं।

0: उनके पास वापस जाओ, हम उन पर ऐसे लश्कर लेकर हमला करेंगे जिनके मुकाबले की उनमें ताकत न होगी, और उनको वहां से बेइज्जत करके निकाल देंगे और वो जलील होंगे।
1: قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين।
0: सुलेमान ने कहा कि ऐ दरबार वालो, कोई तुम में ऐसा है कि कबल इसके कि वो लोग फरमाबरदार होकर हमारे पास आए, मालिका का तख्त मेरे पास ले आए।
1: قال

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

0: www.lucifer.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.
1: डेंगू मच्छर पानी में जन्म लेता है, इसकी अफजाइश के मराहिल से मुकम्मल आगाही डेंगू के खात्मे के लिए जरूरी है। लिहाजा पानी की टैंकी और ड्रम वगैरह जिनमें साफ पानी हो अच्छी तरह ढांप कर रखें। इसके अलावा घर, दफातर, दुकानों और किसी जगह कूड़ा करकट या फालतू अशिया जमा ना होने दें। घरों में मच्छर मार और लार्वा कश केमिकल का स्प्रे करवाएं। इस्तेमाल शुदा बोतलों, प्लास्टिक के थैलों और इस्तेमाल शुदा टायरों में हर गिज पानी जमा ना होने दें। माहौल खुश्क और साफ, डेंगू से मुकम्मल निजात। ये पब्लिक सर्विस मैसेज महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर और यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब के तआवुन से पेश किया जा रहा है।

0: मुझे डायबिटीज? मैं तो बड़ा फिट हूँ, डायबिटीज तो मोटे लोगों को होती है।
1: हम तो खालिस खुराक खाते हैं, हमें नहीं होगी डायबिटीज।
2: डायबिटीज वो तो मीठा खाने से होती है, इसीलिए मीठा खाती ही नहीं।
0: डायबिटीज तो सिर्फ बुढ़ापे में होती है।
3: मैं भी यही सोचता था, मगर सच तो ये है कि पाकिस्तान डायबिटीज के हवाले से दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है। इसीलिए अपनी सेहत पर गौर करें। अगर आपको इनमें से कोई भी अलामत महसूस हो रहे हो तो फौरन अपने डॉक्टर से मशवरा करें। डायबिटीज वसाइल और आमदनी से नहीं बल्कि एक्शन से कंट्रोल हो, यानी मतवाजन गजा, रोजाना एक्सरसाइज और डॉक्टर की तजवीज की हुई दवा। याद रखिए, अगर डायबिटीज से जीतना है तो वक्त पर एक्शन लेना है।

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Union.

0: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी। मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशत गर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखादही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम हैं। इस तरह की खिलाफ वर्जियां पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं, तो बराह करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
1: सुनना है तो इसे सुनो।

0: Ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, we are live now.
1: क्या आपने अपने बेटे की रवैये या आदत में कोई तब्दीली महसूस की है? जैसे स्कूल से गैरहाजिरी की वजह पूछे तो टाल मटोल करता है, आजकल कुछ ज्यादा पैसे तो नहीं मांगता, ज्यादा वक्त दोस्तों में गुजारता है, बुझा बुझा सा रहता है, कोई बीमारी नहीं लेकिन कमजोर होता जा रहा है, कभी नोट किया है आंखें लाल लाल सी हैं? अगर इन सवालों का जवाब हाँ में है तो ये नशे की अलामत हो सकती है। घबराने या सख्ती करने की जरूरत नहीं, इसे जल्द डॉक्टर को दिखाइए, कहीं देर ना हो जाए।
2: This is a public service message from INL, MNC and UNODC.

0: number one radio station, FM 92.6, UCP ki duniya. UCP ki duniya.
1: Sufi sings who? That which is, that which was, that which will be.
2: مسلمانی که داند رمز دین را نساید پیش غیر الله جبین را اگر گردون به کام او نگردد به کام خود بگرداند زمین را این رادیو FM 92.6 است بشنوید جهان یو سی پی
3: If you want to stay connected to the latest updates of your country, stay connected to University of Central Punjab, FM 92.6, UCP Ki Duniya.
4: Assalamu alaikum listeners, main hoon aapki host Amna Mehmood, mukhatib hoon aapse FM 92.6, UCP Ki Duniya se. Listeners, zara sochiye. अगर आज का स्टूडेंट अपनी स्पीड और अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कहीं भी और कहीं से भी सीख सके अगर क्लासरूम सिर्फ चार दीवारी तक महदूद ना रहें और टेक्नोलॉजी हर लर्नर की जरूरत को समझकर उसे रहनुमाई फराहम करे तो एजुकेशन कैसी नजर आएगी आज हम इसी दिलचस्प और तेजी से उभरते हुए कॉन्सेप्ट एजुकेशन 2.0 और फ्यूचर ऑफ लर्निंग पर बात करेंगे हम जानेंगे कि एजुकेशन किस तरह एक नए दौर में दाखिल हो रही है जहां टीचर्स सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर नहीं बल्कि मेंटर्स बन रहे हैं स्टूडेंट पैसिव लिसनर्स की बजाय एक्टिव लर्नर्स बन रहे हैं और टेक्नोलॉजी सीखने का सफर को ज्यादा मीनिंगफुल और पुर असर बना रही है हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सर मोहम्मद बासित अली गिलानी साहब जो कि यूसीपी एफवाईटी के कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में सीनियर लेक्चरर हैं और आप 12 साल से ज्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस रखते हैं और इसके अलावा इंडस्ट्री में एज डेटाबेस डेवलपर भी काम कर चुके हैं और इसके साथ साथ 100 प्लस अंडर ग्रेजुएट फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स में स्टूडेंट को गाइड भी कर चुके हैं अस्सलाम वालेकुम सर
5: वालेकुम सलाम
4: सर बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का सर वक्त ज़ाय किए बगैर अपने सवालात का आगाज करते हैं सर आजकल एक टर्म बहुत ज्यादा सुनने को मिलती है एजुकेशन 2.0 आप हमारे लिसनर्स को आसान अल्फाज में बताएं कि एजुकेशन 2.0 का कॉन्सेप्ट क्या है और ये ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम से किस तरह डिफरेंस रखती है
5: अच्छा मैडम ये है कि जो एजुकेशन 2.0 है इससे मुराद हम ये लेते हैं कि जो हमारे मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है
4: जी
5: एक हमारे पास होता है ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम जो कि टीचर सेंटर्ड ज्यादा होता है टीचर ओरिएंटेड ज्यादा होता है
4: बिल्कुल
5: एक क्लासरूम है क्लासरूम में हम 30-40-50 स्टूडेंट्स को बैठा देते हैं टीचर्स आते हैं लेक्चर्स डिलीवर करते हैं नोट शेयर करते हैं
4: बिल्कुल
5: अब वो जो एक ग्रुप बन गया 30-40 स्टूडेंट्स का अब टीचर ने उन सबको जब पढ़ाना स्टार्ट कर देना है उसका फोकस जितना मर्जी कोशिश करे एक स्टूडेंट कभी नहीं होगा
4: बिल्कुल
5: उसका जो फोकस यही होगा कि मेरा टॉपिक क्या है आज मैंने डिलीवर क्या करना है वो टारगेट लेके बैठा हुआ है 30-40 स्टूडेंट्स का कि मैंने इतने स्टूडेंट्स को अपना टॉपिक एक्सप्लेन करना है
4: बिल्कुल
5: ये हो गया टीचर सेंटर्ड क्यों क्योंकि उस ग्रुप में से अगर किसी एक को समझ में नहीं आया किसी दूसरे को समझ नहीं आया या फिर सबका इंटेलिजेंस लेवल सबका अंडरस्टैंडिंग लेवल सेम तो नहीं है
4: बिल्कुल
5: जब उनका लेवल सेम नहीं है तो वो एक ही लेक्चर सबके लिए कैसे हो सकता है
4: बिल्कुल
5: हमारे पास यहाँ पे यूनिवर्सिटीज के अंदर 2.0 CGPA वाले स्टूडेंट भी हैं और 3.99 CGPA वाले स्टूडेंट्स भी हैं अब हम एक लाइन में एक्सप्लेन करें 3.99 CGPA वाला स्टूडेंट बहुत इजीली पिक करेगा क्योंकि वो पहले भी प्रैक्टिस करके या सीख के आया है
4: उसका कैलिबर
5: कैलिबर डिफरेंट है उसका
4: बिल्कुल
5: जबकि जो हमारे पास 2.0 वाला जो स्टूडेंट है उसकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी लो पेस पे चल रही है
4: बिल्कुल
5: उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें एक लंबी लंबी एग्जांपल्स कोट करनी पड़ेंगी हमारी ड्यूटी है हम करेंगे
4: बिल्कुल
5: लेकिन अब एक ग्रुप में बैठ के हम ऐसा काम करते हैं वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि वहां पर हम लेक्चर दे रहे हैं टाइम कंस्ट्रेंट है हमारा फोकस ऊपर वाले स्टूडेंट्स भी हैं जो कि मिडल में 3.0 के आसपास आते हैं वो स्टूडेंट्स भी हैं फिर लो कैलिबर वाले भी हैं
4: बिल्कुल
5: तो वो मुश्किल हो जाता है तो ये हमारे ट्रेडिशनल सिस्टम से निकल के स्मार्टर सिस्टम की तरफ जाता है जहां पे हम टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल करते हैं
4: बिल्कुल,
5: जिसमें सबसे मेजर हमारे पास आ जाती है AI की, हमारे पास क्लाउड की, ये हम ज्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ये जो एक टर्म इस्तेमाल की जाती है कि वन साइज फिट्स ऑल,
4: जी
5: ये है ट्रेडिशनल सिस्टम, एक ही साइज सबको नहीं आ सकता, सबकी अपने डिफरेंट साइज, अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं।
4: बिल्कुल,
5: तो एजुकेशन 2.0 पर्सनलाइज एजुकेशन सिस्टम हमें प्रोवाइड करता है कि वो हर स्टूडेंट की जो कैलिबर है वो उसको अंडरस्टैंड करे, उसको अंडरस्टैंड करने के बाद उसके मुताबिक उसको रोड मैप, उसका पाथ प्रोवाइड करे कि आपने यहाँ से कैसे कंटिन्यू करना है।
4: बिल्कुल, अच्छा सर, आपके नज़दीक वो कौन सी बेसिक चेंजेस हैं जो ट्रेडिशनल क्लासरूम को स्मार्ट और टेक्नोलॉजी ड्रिवन लर्निंग एनवायरमेंट में तब्दील कर रही हैं?
5: मैडम, इसमें सबसे पहले तो हमारे पास यही आता है कि हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जो है प्रमोट करना है। हम आल्दोस पे भी बात करते हैं कि ये शायद हमारे लिए नेगेटिव भी हो सकता है
4: जी।
5: लेकिन हमने इसको प्रमोट करना है और इसके हमने गुड पॉइंट्स, जो हमारे पास प्लस पॉइंट्स हैं, उनके ऊपर हमने बात करनी है, उसको हम यहाँ पे इंटीग्रेट करते हैं। हमारे पास जो क्लाउड है
4: जी,
5: हम उसको प्रमोट करते हैं, हम अपना डाटा क्लाउड पे रखते हैं। हमारी बड़ी कॉमन प्रैक्टिस आजकल होती भी जा रही है कि हम स्टूडेंट को ऑनलाइन जो है डाटा पोर्टल्स के थ्रू प्रोवाइड कर रहे हैं, LMS हम यूज कर रहे हैं, जिससे फायदा ये होता है कि स्टूडेंट दुनिया में कहीं पर भी है, घर पे है, हॉस्टल में है, क्लासरूम में है, कैंपस में किसी जगह पे बैठा हुआ है, तो वो अपने उस डाटा को, नोट्स को वहां से क्या कर सकता है,
4: एक्सेस
5: कर सकता है। तो ये जो चीज है ना, हमें अपने हमारे बनता है कि हम अपने ट्रेडिशनल क्लासरूम को स्मार्टर बनाने के लिए AI टूल्स का इस्तेमाल करें, क्लाउड का इस्तेमाल करें, डेटा एनालाइजर्स जो है टूल्स वो इस्तेमाल करें, और LMS जो कि आजकल हम कॉमनली यूज कर भी रहे हैं।
4: सर, अभी आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जिक्र किया, LMS का जिक्र किया, तो सर एजुकेशन 2.0 को कामयाब बनाने में AI, वर्चुअल रियलिटी, LMS और डेटा एनालिटिक्स जैसी टेक्नोलॉजीज किस हद तक अहम किरदार अदा कर रही हैं?
5: मैम, AI तो उसमें बहुत इम्पोर्टेंट है, उसमें सबसे मेन बात ही ये आती है कि जब हम

0: चेंज कर देगा।
1: बिल्कुल।
0: अब इसमें आपने एक ही इंपॉर्टेंस पे हम अगले पॉइंट की तरफ देखें तो वो हमारे पास क्या है, एक तो हो गया उसका डेडिकेटेड पाथ उसको मिलेगा, दूसरा इसमें ये आता है 24/7 अवेलेबिलिटी। हम टीचर्स हैं, हम क्लासरूम में कैंपस में अवेलेबल हैं, या स्टूडेंट हमें पोर्टल्स के थ्रू, LMS के थ्रू या ईमेल्स के थ्रू हमें जो है ना कॉन्टेक्ट करते हैं। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट है, नेक्स्ट डे एग्जाम है, उसने रात को लेट नाइट स्टडी करनी है, अब रात को 1 बजे का टाइम, 2 बजे का टाइम, उसको हेल्प चाहिए, कहाँ से मिलेगी? AI से मिलेगी। वो अपना प्रॉब्लम है वो वहाँ पे शेयर करेगा, उसको साथ ही सलूशन मिलेगा, वो उसके ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन करेगा, उसका सलूशन मिलेगा, फिर उसका नेक्स्ट, वो चेन ऑफ क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो हर क्वेश्चन के ऊपर AI का जो आंसर है, एक तो ज्यादा स्पेसिफिक होता जाता है, सेकेंडली वो हमारे जो है उस चीज को अंडरस्टैंड कर रहा होता है कि हम पूछना क्या चाह रहे हैं, वो हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक ही हमें एक्सप्लेन करेगा।
1: बिल्कुल। लिसनर्स, वक्त हुआ जाता है एक छोटी सी म्यूजिकल ब्रेक का, हमारे साथ रहें, सुनते रहें FM 92.6 UCP की दुनिया।

0: If you want to stay connected to the latest updates of your country, stay connected to University of Central Punjab FM 92.6 UCP Ki Duniya.
1: वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं FM 92.6 यूसीपी की दुनिया। लिसनर्स, ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे एजुकेशन 2.0 और फ्यूचर ऑफ लर्निंग के बारे में, और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सर मोहम्मद बासित अली गिलानी साहब, जिन्होंने हमें बड़ी तफसील से बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्चुअल रियलिटी और LMS किस तरह एजुकेशन 2.0 में अपना रोल प्ले कर रहे हैं। अपनी गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाते हैं। सर, कुछ लोगों का ख्याल है कि AI एक दिन टीचर्स को रिप्लेस कर देगी। क्या आप समझते हैं कि टेक्नोलॉजी टीचर्स का मुतबादल बन सकती है या उनके किरदार को मजीद मजबूत करेगी?
2: नहीं मैडम, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लोगों का मानना है कि AI आने से बहुत सारी जॉब्स चली जाएंगी, जिसमें हम टीचर्स भी हैं।
1: बिल्कुल
2: ऐसा नहीं होने वाला। AI के साथ टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले से ज्यादा हो गई है, कम नहीं हुई ना खत्म होगी, कभी खत्म नहीं होगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा इस तरह से हुई है कि जब स्टूडेंट्स को हमने AI को यूज करने को प्रेफर करने को कहना है, क्या प्रेफर है कि आप इस्तेमाल करो, लेकिन हमने साथ उनका इस्तेमाल का सही तरीका भी बताना है, जिसमें देखें टीचर ने उसको गाइड भी करना है, टीचर ने उसको मोटिवेट भी करना है। क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो वाला पार्ट कभी खत्म नहीं होने वाला।
1: बिल्कुल,
2: तो यहाँ पर टीचर का जो पार्ट है वो पहले से कहीं ज्यादा निकल के सामने आएगा।
1: बिल्कुल। अच्छा सर, पर्सनलाइज्ड लर्निंग का कॉन्सेप्ट आज बहुत मकबूल हो रहा है, ये ट्रेडिशनल वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच से किस तरह मुख्तलिफ है और स्टूडेंट को क्या फायदा पहुंचता है?
2: मैम, जैसे हमारा एजुकेशन 2.0 का जो मेन फोकस है वो इस पर ही है, पर्सनलाइज्ड पाथ।
1: बिल्कुल।
2: इसमें जैसे रोड मैप होते हैं हमारे पास जो है ना, इसके अंदर गाइडलाइंस तैयार की जाती हैं। अब स्टूडेंट है, वो टॉपिक समझना चाह रहा है, वो समझेगा। अब वही जो चीज एक चेन ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं, वो उसके ऊपर जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होना है वो AI ने उसको असेस करने के बाद देना है। अब स्टूडेंट कहता है मुझे समझ में नहीं आया, उसकी असेसमेंट होगी, उसका फीडबैक आ गया। अगर फीडबैक बहुत अच्छा है वो नेक्स्ट टॉपिक पे जा सकता है, उस टॉपिक की डिटेल डेप्थ में जा सकता है। लेकिन उस फीडबैक से AI ने असेस किया कि नहीं भाई, इसमें अभी वीकनेस है, तो साथ ही क्या करेगा, उस टॉपिक को

0: आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCP की दुनिया।
1: वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया। लिसनर्स, ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे एजुकेशन 2.0 और फ्यूचर ऑफ लर्निंग के बारे में, और इस अहम मौजू पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सर बासत अली गिलानी साहब, जिन्होंने हमें बड़ी तफसील से बताया कि एजुकेशन 2.0 और ट्रेडिशनल एजुकेशन में क्या डिफरेंस है, AI और LMS का क्या रोल है एजुकेशन 2.0 में, और किस तरह असेसमेंट्स और एग्जामिनेशन में तब्दीली लेके आ रहा है एजुकेशन 2.0, और किस तरह से हम पर्सनलाइज कर सकते हैं हर स्टूडेंट के कैलिबर के अकॉर्डिंग। उसके बाद उन्होंने बड़ी तफसील से बताया कि इसके क्या चैलेंजेस हैं और क्या बेनिफिट्स हैं। अपनी गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाते हैं। सर, अगर हम अगले 10 सालों के क्लासरूम्स का तसव्वुर करें तो आपके ख्याल में फ्यूचर क्लासरूम्स किस तरह के होंगे?
2: मैडम, ये जो आने वाले सालों में फ्यूचर में हमारे पास क्लासरूम्स होंगे, ये हाइब्रिड मॉडल पे चलेंगे। टीचर वहाँ पर है तो वो सिस्टम भी साथ चलेगा, लेकिन हमारे पास हाइब्रिड मॉडल में हम डिजिटल लर्निंग को ज्यादा प्रमोट कर रहे होंगे। उसमें हमारे पास स्मार्ट बोर्ड्स, उसमें हमारे पास AR VR सिमुलेशंस हमारे पास होंगी, इसमें हमारे पास AI टूल्स बहुत ज्यादा कॉमन होना शुरू हो जाएंगे। फिर क्लासरूम्स को हम कनेक्ट करते हैं इंटरनेशनली दूसरे ग्लोबल स्टूडेंट्स के साथ, ताकि उनकी वहाँ पे भी इंटरेक्शंस जो है साथ साथ कम्युनिकेशन होती रहे।
1: स्टूडेंट एंगेजमेंट और मोटिवेशन को बरकरार रखना एक चैलेंज है। एजुकेशन 2.0 किस तरह लर्निंग को ज्यादा इंटरैक्टिव और दिलचस्प बनाता है? वैसे तो आपने भी ये बताया भी है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप इसको मजीद एलैबोरेट कर दें।
2: मैम, ह्यूमन साइकी एक है कि जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन या विजुअल्स उसको मिलते हैं वो उससे बहुत जल्दी पिक करता है, और जब हम यहाँ पे कंप्यूटराइज या डिजिटल लर्निंग की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे विजुअल रिप्रेजेंटेशन बहुत इस्तेमाल की जा रही होती है।
1: बिल्कुल,
2: तो उसमें हमारे पास यही है कि हम मोटिवेशन यहाँ पे जो सिमुलेशंस के थ्रू, गेमिफाइड लर्निंग एनवायरनमेंट के थ्रू विजुअल कंटेंट प्रोवाइड करेंगे, ताकि स्टूडेंट्स जो है सब सुनते ही नहीं बल्कि एक्टिवली पार्टिसिपेट भी करते रहें। AI उनके इंटरेस्ट के मुताबिक कंटेंट जनरेट करेगा, ये इसका मेन पर्पस है कि AI ने हमें प्रोवाइड ही वो करना है जो कि एक्चुअली में हमारे लिए ही बनाया गया होगा, तो हमारा इंटरेस्ट वहाँ पे कभी भी लूज नहीं होगा।
1: बिल्कुल सर, पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर मुल्क की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एजुकेशन 2.0 कितना मौसर साबित हो सकता है, और इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए किस तरह की रिक्वायरमेंट्स की जरूरत है?
2: मैम, इससे पहले इसमें तो सबसे पहले जो चीज है ना, वो हमें अपनी कनेक्टिविटी, इंटरनेट कनेक्शंस को स्ट्रॉन्ग करना है,
1: जिनके हालात बहुत बुरे हैं।
2: हमारे गांव देहात में देखें, आज भी स्टूडेंट्स को ये चैलेंज देखने को मिलता है कि हमारी कोविड आ गया या कोई और सिचुएशन के अंदर हमारी क्लासेस अगर ऑनलाइन जा रही है, तो वहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट्स को ऑनलाइन प्रोवाइड कर रहे हैं लेक्चर्स नोट्स, लेकिन स्टूडेंट तक वो पहुँच नहीं रहे, उसमें इंटरनेट है। तो पाकिस्तान में रहते हुए अगर पाकिस्तान के लिहाज से बात की जाए तो उसमें AI टूल्स को कॉमन बनाना, एक तो उनकी फी, उनकी जो है वो या तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं वो उसमें अकोमोडेट करके उनको स्टूडेंट अकाउंट्स क्रिएट करके दें, या तो ये जो प्रोवाइडर्स हैं वही उनकी फी को स्टूडेंट्स के लिए मिनिमम कर दें जो कि होती भी है, या तो उसको फ्री करें।
1: बिल्कुल,
2: साथ में इंटरनेट कनेक्टिविटी, ये सबसे इम्पोर्टेंट होगा पाकिस्तान में रहते हुए, वो भी ऐसे एरियाज में, गांव देहात वगैरह में जहां पे इसकी जरूरत ज्यादा है।
1: सर, फ्यूचर में स्टूडेंट्स को सिर्फ एकेडमिक नॉलेज ही नहीं बल्कि मुख्तलिफ स्किल्स की भी जरूरत होगी, आपके नज़दीक कौन सी कॉम्पिटेंसीज सबसे ज्यादा अहमियत रखती हैं?
2: स्टूडेंट्स को डिजिटल लिटरेसी और प्रॉब्लम जो सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग है, इसकी ज्यादा जरूरत है। आजकल सब हमारे कंप्यूटर साइंस फील्ड में नहीं, जैसे हम देखते हैं हमारे पास कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स हैं, उनमें भी हमारे पास प्री मेडिकल वाले बच्चे आ रहे हैं।
1: बिल्कुल,
2: उनको वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट ही चलाना नहीं आता, कि फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट को असाइनमेंट जमा करवानी है उसको नहीं आता। दूसरी चीज, वो 8th सेमेस्टर तक पहुंचने के बाद भी उसको वर्ड पे काम करना नहीं आ रहा, उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आ गई, उसको डेवलपमेंट आ गई। यहां से स्टार्ट होता है कि हम अपने बेसिक एजुकेशन सिस्टम में, जो हमारा स्कूल सिस्टम है, वहाँ पे बच्चों को डिजिटल जो है ना एजुकेशन प्रोवाइड करें, उनको डिफरेंट टूल्स सिखाएं। AI को अगर यूज करना है तो AI के अंदर जो प्रॉम्प्ट होता है, प्रॉम्प्ट को इस्तेमाल करना हम उनको सिखाएं।
1: बिल्कुल
2: ठीक है, कि अपने सही प्रॉम्प्ट कैसे करना है, जितना ज्यादा एक्यूरेट आपका प्रॉम्प्ट होगा उतने बेहतर आपके पास आपके रिजल्ट्स आएंगे।
1: बिल्कुल सर, ये तो हो गया स्टूडेंट्स के लिए। सर, अगर हम टीचर्स की बात करें तो टीचर्स के लिए कौन सी स्किल्स को सीखना या अपने आप को इवॉल्व करना किस हद तक जरूरी है?
2: आपने टीचर्स की ट्रेनिंग और टीचर्स के रोल की बात की है, देखिए इसमें टीचर्स की ट्रेनिंग भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। हम कंप्यूटर साइंस टीचर से हट के बात करें तो एजुकेशन सिस्टम यहाँ पे खत्म नहीं होता। हमारे पास लाइफ साइंसेज वाले भी आते हैं, लिटरेचर वाले भी आते हैं, हमारे पास आर्ट्स के टीचर्स भी आते हैं, तो ये उनके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उन चीजों को अडॉप्ट करें। जब तक टीचर्स खुद अडॉप्ट नहीं करेंगे वो आगे बच्चों को सिखाएंगे कैसे, उनको कैसे मोटिवेट करेंगे कि उन्होंने उसका यूज कैसे करना है और यूज नहीं ठीक तरीके से यूज कैसे करना है। तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि टीचर्स की अपनी डिजिटल टूल्स के ऊपर, AI टूल्स के ऊपर उनकी ट्रेनिंग हो ताकि वो आगे जाके स्टूडेंट्स को गाइड कर सकें कि उसको इस्तेमाल से कैसे करना है।
1: अच्छा सर, एक आखिरी सवाल, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का टाइम लिमिटेड है। सर, आप एजुकेशन 2.0 को फ्यूचर में किस नज़र से देखते हैं? क्या ये एक टेम्परेरी ट्रेंड है या एजुकेशन का फ्यूचर इसी मॉडल से वाबस्ता है?
2: फ्यूचर में जो AI है ना, वो AI ट्यूटर की तरह हर स्टूडेंट को अवेलेबल होगा। वर्चुअल रियलिटी क्लासरूम कॉमन होगी, उसके अंदर हमारे पास जो है कम्प्लीटली लर्निंग एनवायरमेंट होगा जो कि पर्सनलाइज्ड हो जाएगा। एजुकेशन 2.0 में पर्सनलाइज पे हम बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। एजुकेशन जो वैसे भी जो है एक प्रोसेस है, वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है, कभी खत्म होने वाला नहीं होता। तो कंक्लूजन हमारे पास यही है कि ये फ्यूचर की टेक्नोलॉजी है जिसमें हम टीचिंग को कंबाइन किया है विद हमारे स्मार्ट सिस्टम, जो कि इसको एजुकेशन का एक इकोसिस्टम बना देते हैं।
1: बिल्कुल।
2: तो ये हमारे पास एसेसिबल भी है, फ्लेक्सिबल भी है, इफेक्टिव भी है, और हमारा मकसद हरगिज ट्रेडिशनल सिस्टम को खत्म करना नहीं है बल्कि उसको मॉडर्न एज के मुताबिक अपग्रेड करना है।
1: बिल्कुल। लिसनर्स, हमारे प्रोग्राम के इख्तितामी लम्हात आ चुके हैं। हम अपने ऑनरेबल गेस्ट सर बासित अली गिलानी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमें अपना कीमती वक्त दिया।
2: शुक्रिया मैडम आपका कि हमें ये मौका दिया हमें कि हम आए और अपना एक्सपीरियंस कुछ बच्चों के साथ, लोगों के साथ शेयर करें।
1: बहुत शुक्रिया। लिसनर्स, आज की गुफ्तगू से ये बात वाज़ेह होती है कि एजुकेशन 2.0 सिर्फ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं बल्कि सोच, सीखने और सिखाने के अंदाज में एक बुनियादी तब्दीली का नाम है। इसका मकसद तालीम को ज्यादा इंक्लूसिव, फ्लेक्सिबल और लर्नर सेंटर्ड बनाना है ताकि हर फर्द अपनी सलाहियतों के मुताबिक तरक्की कर सके। टेक्नोलॉजी इंसानी रहनुमाई का बदल नहीं बल्कि उसकी मददगार है। उम्मीद है कि हमारा आने वाला एजुकेशनल सिस्टम सिर्फ डिग्रीज ही नहीं देगा बल्कि मुस्तकबिल के चैलेंजेस का मुकाबला करने की सलाहियत भी फराहम करेगा। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते इसी वक्त और इसी प्रोग्राम में। तब तक के लिए सुनते रहें FM 92.6 यूसुफ की दुनिया। अल्लाह।

0: जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है। आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
1: लाहौर नंबर वन रेडियो स्टेशन FM 92.6 UCP की दुनिया।

0: Let's get stress free. Tune into FM 92.6 UCP ki duniya.
1: डेंगू मच्छर पानी में जन्म लेता है, इसकी अफजाइश के मराहिल से मुकम्मल आगाही डेंगू के खात्मे के लिए जरूरी है। लिहाजा पानी की टैंकी और ड्रम वगैरह जिनमें साफ पानी हो अच्छी तरह ढांप कर रखें। इसके अलावा घर, दफातर, दुकानों और किसी जगह कूड़ा करकट या फालतू अशिया जमा ना होने दें। घरों में मच्छर मार और लार्वा कश केमिकल का स्प्रे करवाएं। इस्तेमाल शुदा बोतलों, प्लास्टिक के थैलों और इस्तेमाल शुदा टायरों में हरगिज पानी जमा ना होने दें। माहौल खुश्क और साफ, डेंगू से मुकम्मल निजात। ये पब्लिक सर्विस मैसेज महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर और यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब के तआवुन से पेश किया जा रहा है।

0: मुझे डायबिटीज? मैं तो बड़ा फिट हूँ, डायबिटीज तो मोटे लोगों को होती है। हम तो खालिस खुराक खाते हैं, हमें नहीं होगी डायबिटीज।
1: डायबिटीज वो तो मीठा खाने से होती है, इसीलिए मीठा खाती नहीं।
0: डायबिटीज तो सिर्फ बुढ़ापे में होती है।
2: मैं भी यही सोचता था, मगर सच तो ये है कि पाकिस्तान डायबिटीज के हवाले से दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है, इसीलिए अपनी सेहत पर गौर करें। अगर आपको इनमें से कोई भी अलामत महसूस हो रहे हो तो फौरन अपने डॉक्टर से मशवरा करें। डायबिटीज वसाइल और आमदनी से नहीं बल्कि एक्शन से कंट्रोल हो, यानी मतवाजन गजा, रोजाना एक्सरसाइज और डॉक्टर की तजवीज की हुई दवा। याद रखिए, अगर डायबिटीज से जीतना है तो वक्त पर एक्शन लेना है।

0: नंबर वन रेडियो स्टेशन FM 92.6 UCP की दुनिया।
1: आलमी इदारे सेहत के हालिया अदाद व शुमार के मुताबिक 2.2 बिलियन अफराद आँखों के मसाइल से दोचार हैं। सूजी हुई लाल आँखें, मुसलसल सर दर्द, आँखों में दर्द, तेज रोशनी का चुपना, चीजों का डबल और धुंधला दिखाई देना बिनाई की कमजोरी की अलामत हो सकती हैं। ऐसी अलामत की सूरत में बिल्कुल लापरवाही न बरतें और फौरन करीबी अस्पताल से अपना मुआयना करवाएं। ये पब्लिक सर्विस मैसेज महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर की जानिब से पेश किया जा रहा है।
2: आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCP की दुनिया।

0: तो सुनते रहिए FM 92.6 UCP की दुनिया।
1: अनचाही कॉल या पैगाम की शिकायत के लिए मुतालिका फोन नंबर्स के हमरा 9000 पर SMS करें। गुमनाम नंबर से आने वाली कॉल्स या SMS के जवाब में अपनी खुफिया जाती मालूमात हरगिज ना दें। BTA

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Union.

0: मुझे डायबिटीज? मैं तो बड़ा फिट हूँ। डायबिटीज तो मोटे लोगों को होती है।
1: हम तो खालिस खुराक खाते हैं, हमें नहीं होगी डायबिटीज।
2: डायबिटीज वो तो मीठा खाने से होती है, इसीलिए मीठा खाती नहीं।
0: डायबिटीज तो सिर्फ बुढ़ापे में होती है।
3: मैं भी यही सोचता था, मगर सच तो ये है कि पाकिस्तान डायबिटीज के हवाले से दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है। इसीलिए अपनी सेहत पर गौर करें। अगर आपको इनमें से कोई भी अलामत महसूस हो रहे हो तो फौरन अपने डॉक्टर से मशवरा करें। डायबिटीज वसाइल और आमदनी से नहीं बल्कि एक्शन से कंट्रोल हो, यानी मतवाजन गजा, रोजाना एक्सरसाइज और डॉक्टर की तजवीज की हुई दवा। याद रखिए, अगर डायबिटीज से जीतना है तो वक्त पर एक्शन लेना है।
4: Broadcasting University Studios, where knowledge is empowerment. This is Lunch 2.6.

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCP ki duniya.

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCP ki duniya.

0: जी सामिन, प्रोग्राम है मंजिल और मैं हूं अली अशरफ, आपका मेज़बान। और FM 92.6 पर आप इसे सुनते हैं हवा के दोष पे, और इसके अलावा आप इसे एंड्रॉयड और एप्पल की जो ऐप्स हैं उसके ऊपर भी सुन सकते हैं पूरी दुनिया में। वकार बेग स्कॉलरशिप नेटवर्क वाले, मैंने आज इनका नाम डाल दिया। वैसे तो इनको इनफॉर्मली बहुत लोग कहते होंगे, लेकिन मैंने इनका आज एक नाम फॉर्मल डाल दिया। वकार भाई, जब हम ब्रेक पर जा रहे थे पहले, तो हमने डिस्कस किया था कि वो स्टूडेंट्स जो MS इस वक्त कर रहे हैं, कर लिया है, और वो फैकल्टी, यंग फैकल्टी जो कि जिसके दिल में ख्वाहिश है कि वो फ़ौरन PhD करे, तो उसके लिए उस पर, उसकी गाइडलाइन पर जाने से पहले मैं एक अपना ज़ाती सवाल भी आपसे करना चाहूँगा। वो मेरा ज़ाती सवाल ये है, जो कि मेरे जैसे और बहुत सारे लोगों का भी सवाल होगा, वो ये कि जब हम आपका भी देखते हैं स्कॉलरशिप नेटवर्क या और हम वेबसाइट्स देखते हैं, तो हमें नेचुरल साइंसेज के स्कॉलरशिप बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं, आपके सोशल साइंस के स्कॉलरशिप कम नज़र आते हैं। ये ऐसा ही है या हमें लगता है?
1: अच्छा, अगर इसको मैं टेक्निकली दो तरीके आंसर, बाय द नंबर्स एक चीज़ डिफरेंट होती है और बाय द एक्सपीरियंस एक चीज़ डिफरेंट होती है। ऑब्वियसली कुछ टेक्निकल का इस वजह से थोड़े से ज़्यादा नज़र आते हैं, क्योंकि फंडिंग ज़्यादा है और यू नो टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से एडवांस करती है। पर एट द सेम टाइम, जैसे जैक मा ने कहा कि आगे फ्यूचर के अंदर टेक्नोलॉजी इज़ नॉट द थिंग, क्रिटिकल थिंकर्स हमें चाहिए यू नो, जो कि चीज़ों को एवेल्यूएट कर सके, क्योंकि हर चीज़ तो ऑटोमेटिक होती जा रही है, लेकिन थिंकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि सोशल साइंसेज के अंदर बहुत ज़्यादा पाई जाती है। इस फील्ड के अंदर बहुत ज्यादा है कि क्रिटिकल थिंकिंग स्पेसिफिकली। बट यस, स्कॉलरशिप जिस सोशल साइंसेस के भी होते हैं, सिर्फ देखने का एक तरीका होता है। मैं इसके लिए बड़े एक आसान सा रूल बताता हूँ स्टूडेंट्स को, मैं आपको आज वो बता देता हूँ। वो ये है कि आपने सोशल साइंस के स्कॉलरशिप्स को डायरेक्ट टारगेट करना होता है, देखें गवर्नमेंट कौन कौन सी फंड कर रही है। ज्यादातर जो फॉरन गवर्नमेंट्स पाकिस्तान को फंड देती है ना प्रोग्राम्स के अंदर स्कॉलरशिप, वो ज्यादातर जो होते हैं वो हर फील्ड के होते हैं, ना सिर्फ टेक्निकल के बल्कि सोशल साइंस के। अगर आपको नहीं भी नजर आ रहे तो ट्राई टू लुक एट द गवर्नमेंट फंडेड प्रोग्राम, क्योंकि हमें मिलते हैं कई हैं इसके अंदर। कोरियन गवर्नमेंट है, स्विस गवर्नमेंट है, रोमानियन गवर्नमेंट है, जापानीज गवर्नमेंट है, तो बहुत सारे आपको इस तरह के गवर्नमेंट जो फंडेड स्कॉलरशिप्स हैं, दे आर अ लॉट, वो जो हमें मिलते
0: अच्छा,
1: हैं।
0: मैंने देखा है कि आपकी बात सही कि ये सारी गवर्नमेंट्स में से मैंने एक स्कॉलरशिप नेटवर्क पे भी, और अमूमन बहुत दो तीन साल से पहले भी होगा, दो तीन साल से बहुत देख रहा हूँ, वो मैक्स्ट का स्कॉलरशिप है, तो उसके अंदर भी मैंने देखा है कि 100% स्कॉलरशिप जो ले रहे होते हैं, विन कर रहे होते हैं, वो नेचुरल साइंस के ही होते हैं। तो क्या मैक्स्ट में भी सोशल साइंस के स्कॉलरशिप होते हैं या नहीं होते?
1: एक्चुअली बाय डिफॉल्ट तो नहीं है, लेकिन अगर नॉर्मली लोग टेक्निकली अप्लाई करते हैं वहाँ, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो सोशल साइंस के लोग कम अप्लाई करते हैं, इसी वजह से ज़्यादातर वो जाते हैं। होता है क्या, नॉर्मली सोशल साइंसेस के जो बच्चे हैं मैंने देखा है, वो नॉर्मली ये सोच के बैठे हुए होते हैं कि जी हमारा तो होना नहीं है। तो ये बड़ा एक मिथ बना हुआ है कि वो सोचते हैं, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि एवरी स्कॉलरशिप के अंदर सीट्स, चाहे वो बता भी नहीं हो, एक दो सीट जरूर रखी जाती हैं हर फील्ड की, जो इन सके टोटली टेक्निकल स्कॉलरशिप हो। हाँ, कम हो सकती हैं, लेकिन ये फॉर श्योर है कि फॉरेन फंडेड जितने भी स्कॉलरशिप्स हैं उसके अंदर सोशल साइंसेज की सीट्स होंगी। अच्छा, इसके अलावा अगर सोशल साइंसेज के ज्यादातर स्कॉलरशिप को तरीकाकार ये होता है कि आप यूनिवर्सिटीज़ को खुद कॉन्टैक्ट करें, ठीक है। टेक्निकल का तो ये होता है कि उनको रिक्वायरमेंट होती है इंडस्ट्री को, वो साथ कोलेबरेट करें तो तेजी से ले रहे होते हैं। नॉर्मली सोशल साइंसेज के अंदर लोगों को ये कोशिश करनी चाहिए कि यूनिवर्सिटी से खुद रब्ता करने की कोशिश करें, और खुद प्रोफेसर बताया था कि अच्छा यार ये स्कॉलरशिप है, या वो फंडिंग के लिए बैठा होता कहता है अच्छा ये स्टूडेंट आइडिया लेकर आया, अच्छा मैं ऐसा करता हूँ कि इसको साथ अपने मिलाता हूँ और आगे किसी स्कॉलरशिप पे अप्लाई करता
0: हूँ। विकास साहब, जो फंडिंग की आपने बात की, तो फंडिंग ज्यादातर नेचुरल साइंस में लैब में होती है कि जी आज मैंने एक लैब बनाई हुई है, इसके अंदर आप करें, आप खुद भी नेचुरल साइंसेज के हैं, तो सोशल साइंस में भी इस तरह की फंडिंग अवेलेबल होती है?
1: जी बिल्कुल, वो रिसर्च की फंडिंग होती है, वो भी लैब में ही होती है। आपने बैठना है स्पेसिफिकली, मैं आप उसको लैब कह दें, आपने बैठना है और उसके अंदर प्रोफेसर आपसे किसी स्पेसिफिक एरिया के अंदर बात करवाएगा। फॉर एग्जाम्पल, दे आर वर्किंग टूवर्ड्स पाकिस्तान के रिलेशनशिप विद अदर कंट्रीज, सो मेनी प्लेसेस। और मैंने आपको बताया कि हमारा ज्यादातर फोकस ये होता है कि वो टेक्निकल तो आ रहे हैं, हमारा फोकस ग्रुप पे ये होता है कि हम सोशल साइंस देखें। जिस तरह मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ इसकी, बड़ी अच्छी इटालियन PhD हमारा बहुत फेमस प्रोग्राम है, एम्बेसी में भी कभी आप जाएं तो मुझे बच्चे ने, मैंने उसका नाम रखा था
0: रेडमार्क या लैंडमार्क बन गया आपका,
1: कि हमने उसका नाम रखा रेनफॉल, तो बच्चे दूसरे पूछ रहे वो रेनफॉल वाले हैं, हालांकि मैंने ना रेनफॉल इस वैसे कि मैं आपको इसकी एग्जाम्पल देता हूँ। इस साल 200 प्लस स्टूडेंट्स जा रहे हैं अनऑफिशियल, जो हमने काउंट किए हैं, टू इटली, और अगर आप देखें उनके अंदर तो 200 प्लस बच्चे एक साल के अंदर, और ज्यादातर आप सोशल साइंसेज के, ज्यादातर सोशल साइंस के। तो द थिंग इज रेड के हमने सिर्फ ये किया कि हमने देखना शुरू किया एक राइट डायरेक्शन के अंदर, और उस राइट डायरेक्शन में देखने की वैसे मिलना शुरू। तो मैं आज जो भी सोशल साइंसेज के लोग हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि भाई आपके स्कॉलरशिप बहुत ज्यादा अवेलेबल है, कोशिश करें खुद, क्योंकि आपकी फील्ड भी ऐसी जिसके अंदर आप यू नो यू हैव टू टेक द इनिशिएटिव, तो आप कोशिश करें रابطہ
0: करें। अच्छा वकार साहब, हमें क्योंकि वक्त हमारा खत्म हो रहा है बिल्कुल, तो हमें ये बताएं कि PhD में एडमिशन लेने के लिए जिस तरह आपने हमें FSC का बताया, बैचलर्स का बताया, तो क्योंकि ऑडियंस थोड़ी सी मेच्योर होती है तो इनको क्या करना चाहिए, मतलब वो जनरल आपकी गाइडलाइन जिसमें आपने कहा कि आप जो हैं अपडेटेड रहें, ऑर्गेनाइज रहें, आप कॉन्फिडेंट रहें, आप परसिस्टेंस रहें, इन एडिशन टू दिस PhD का स्कॉलरशिप लेने के लिए पहले स्टेप्स क्या हैं?
1: जी देखें, PhD के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि मास्टर्स के से ज़्यादा स्कॉलरशिप हैं PhD के, तो PhD के स्कॉलरशिप के लिए ज़रूरी ये है कि आप अपना माइंड बनाएं। इसके अंदर एक एक्स्ट्रा चीज़ ऐड होती है, रिसर्च प्रपोजल। मैं ये नहीं कहता आपके रिसर्च पेपर्स हो, कई मुल्कों के अंदर रिसर्च पेपर्स ही मैटर करते। हमारा साथ कई दफ़ा एक्सपीरियंस हो कि जर्मनी के अंदर स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया, उनके बड़े ज़्यादा रिसर्च पेपर आई रिमेंबर 1-50 से ऊपर हैं और एक ओवर के, तो दोनों की तरफ से हमें कॉमन रिस्पॉन्स ये मिला कि प्रोफेसर कहता है कि तुमने पब्लिश ना भी किया तो तुम्हारा माइंड कोहेरेंट होता, एक तरफ होता बिल्कुल, तो हम तुम्हें रख लेते। तो प्लेसेस को देखें, किस किस जगह अप्लाई करना है, रिसर्च प्रपोजल बड़ा अच्छा बनाया हुआ हो। और रिसर्च प्रपोजल का मकसद ये नहीं है कि आपका आइडिया बड़ा बेहतरीन होना चाहिए, उसके अंदर आपने अपने आप को किस तरह साबित किया है कि जो आप रिसर्च कर रहे हैं वो कितनी पिछली जो रिसर्च हुई है वो कितनी ज़्यादा मैच कर रही है आपने जो काम किया। इसके अलावा आपने बाकी वही आइडियस टॉफल दिया हुआ हो और आपको जगहें पता हो। ज़्यादातर स्टूडेंट्स ये करते हैं कि वो अप्लाई नहीं करते कि पता नहीं उनका होगा कि नहीं। मैंने ज़्यादातर ये मास्टर के स्टूडेंट्स के अंदर ये बहुत ज़्यादा आदत देखी। तो आपने अप्लाई ज़रूर करना है, ठीक है, शुरू में फेलियर नहीं होंगे, अपना अपडेट करें अपना प्रोफाइल, जो पहले जा चुके हैं स्कॉलरशिप पे हम उनको कनेक्ट करवाते हैं, उनके साथ रابطہ करें, पोस्ट करें ग्रुप पे कि अच्छा भी ये इश्यूज आ रहे हैं, तो मेरे ख्याल में कोई मुश्किल नहीं। मैंने अब तक जब हम 200
0: अच्छा, ये बता दें जरा काइंडली कि ये तो अप्लाई करने बेसिक डॉक्यूमेंट्स जिस क्या है, जिस तरह आपने बताया कि HEC से वेरीफाई करवा लें अपनी जो डिग्रीज हैं, वो HEC वेरीफाई कर देगी, अपनी जो मैट्रिक और इंटर की आपकी ट्रांसक्रिप्ट्स हैं उनको आप बोर्ड से जो भी आपका रिलेवेंट है वो करवा लें, IELTS आप कर लें प्रेफरेबली, और क्या जो बेसिक चीजें जो कि आपको कहेंगे ये तो आपको चाहिए।
1: बिल्कुल, एज अ कंटिन्यूशन वही GRE अगर आप करना चाहते हैं वो जरूर कर लें। कई जगह पे GRE मांग लेते हैं, US, सिंगापुर और इस तरह की कुछ यूनिवर्सिटीज में मांग लेते हैं। इसके अलावा बाकी ये है कि रिसर्च प्रपोजल बड़ा अच्छा तैयार किया वो, प्लीज उस पर काम करें। पब्लिकेशन ना भी हो तो कोई हर्ज नहीं है, हाँ कर लें तो बेहतर है। इसके अलावा अगर आप समझते हैं, हम स्टूडेंट्स को ये भी कहते हैं चाहे वो बैचलर से मास्टर के वगैरह, चाहे मास्टर से PhD के लिए, उनको हम ये भी कहते हैं कि अगर आप रिसर्च के अंदर अगर नहीं कर पा रहे तो ऑनलाइन जो कोर्सेज है ना वो जरूर आपने किए हों, आजकल फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन कोर्सेज कोर्सेरा और इस तरह की वेबसाइट्स पे मिल जाते हैं, वो जरूर कर लें अपनी फील्ड से रेलिवेंट, क्योंकि वो अगर आप उसके सर्टिफिकेट के वो पैसे मांग रहे हैं, जरूरत नहीं है उस सर्टिफिकेट के पैसों की, आप उसका अगर रिजल्ट भी शो कर देते हैं, ईमेल भी शो करते हैं मैंने किया हुआ, तो ड्यूरिंग द इंटरव्यू आप परफॉर्म अच्छा कर रहे होंगे क्योंकि आपने सीखा है वो कोर्स, तो वो फायदा देगा। तो ऑनलाइन कोर्सेज कर लें, बाकी ये है कि डेडलाइंस देखते रहें। कई जगह पे ओपन पोजीशन होती हैं कि खुद डिफाइन करना होता है प्रोजेक्ट, कई जगह पे प्रोजेक्ट डिफाइन किया होता है आपने फिट इन होना है, जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो अपना प्रोफाइल CV वगैरह जो भी सेंड कर रहे हैं वो उसके हिसाब से उसको रीअरेंज कर लें।
0: अच्छा वकार साहब, ये बताएं कि जिस तरह हर चीज़ का सीज़न होता है, गर्म कपड़ों का भी सीज़न है, ठंडे कपड़ों का भी सीज़न है, तो स्कॉलरशिप के कितने सीज़न आते हैं साल में?
1: अगर आप मेरे से पूछे तो मेरे लिए तो 24/7 और 365 डेज है। आप यकीन करें कि
0: जो फेमस स्कॉलरशिप है, जिस तरह आपका रेनफॉल जिसका आपने नाम लिया, इटली का स्कॉलरशिप है, इस तरह जो अब क्योंकि हम साल के शुरू में हैं तो यहाँ पे हम प्लान कर रहे होते हैं, बहुत सारे लोगों ने एक न्यू ईयर रेजोल्यूशन भी बनाई होगी कि इस साल हमने बाहर लाजमी जाना है, तो वो अपना कैलेंडर सेट कर लें। तो आप बता दें कि जनवरी फरवरी मार्च में कौन से हैं, 3-3 महीने या जिस तरह भी आप इसे साल को डिवाइड करना चाहें, बड़े बड़े स्कॉलरशिप्स आप जरा बता
1: दें। बिल्कुल, मैं इसके लिए आसान तरीन तरीका ये बताऊंगा, PhD के लिए तो जी ऑल ओवर द ईयर ऑफर होते हैं, प्रोजेक्ट्स अनाउंस हो रहे हैं, आप वेबसाइट्स वगैरह कंट्रीज की यूनिवर्सिटीज़ की वो देखते रहें, ठीक है। जो मास्टर्स के हैं वो आपको पता है वही तरीका कह रहा है, स्प्रिंग और फॉल का सीजन होगा, तो बड़े बड़े स्कॉलरशिप्स मुस्तकिल आते हैं। अभी फॉर एग्जांपल अगर मैं
0: अगर जनवरी में कोई स्कॉलरशिप प्लान कर रहा है तो वो लाजमन फॉल के लिए करेगा।
1: बिल्कुल,
0: तो
1: जी कुछ केसेस के अंदर फॉल के लिए करेगा और कुछ केसेस के अंदर कुछ में
0: अगले स्प्रिंग के लिए करेगा।
1: हाँ जी, स्प्रिंग के भी आ रहे होते हैं और कुछ के अंदर डेडलाइन इतनी होती है कि वो विद इन अ मंथ फैसला करते हैं यूनिवर्सिटीज के, वो स्प्रिंग अभी जो फरवरी मार्च में उनका स्टार्ट होना है उसी के बीच में कर लेंगे, तो ये बहुत ज्यादा वेरिएबल। हाँ, बड़े स्कॉलरशिप का मैं बता दूं, जिस तरह PhD के लिए हम कहते हैं मारी क्यूरी, PhD यूरोप का सबसे टॉप का स्कॉलरशिप है, हाईएस्ट पेड है,
0: इसके नाम पे यही वो फंड है जिससे नोबेल प्राइज भी दिया।
1: बिल्कुल, शी इज वन ऑफ द इंस्पिरेशन फॉर मेनी ऑफ अस मैम मारी क्यूरी, जिनको दो नोबेल प्राइज मिले हैं और उनके नाम पर है, और ये पीएचडी के लिए है और पोस्ट डॉक के लिए भी है।
0: ये नेचुरल साइंस के मिलता
1: है एवरी फील्ड।
0: अच्छा,
1: ये एवरी फील्ड है। ऑब्वियसली आपको प्रोजेक्ट ज्यादातर नजर आएंगे नेचुरल साइंस के, लेकिन सोशल साइंसेज के भी आप उसके अंदर ये देख सकते हैं कि कौन से आप फिट इन होने चाहिए। इसके अलावा मारी क्यूरी का प्रोजेक्ट एक और तरीके से भी अप्लाई होता है कि आप यूरोपियन प्रोफेसर के साथ रब्ता करें, दे कैन अप्लाई बेस्ड ऑन योर आइडिया फॉर अ प्रोजेक्ट फंडिंग जो कि मारी क्यूरी के अंडर हो। इसके अलावा बड़े क्वेश्चन में रास्मस है, जिसकी आज का डेडलाइन है मास्टर्स का, मास्टर्स के लिए वो यूरोप में पढ़ने के लिए। अभी फुल ब्राइट आ जाएगा यूएस का, जो कि आई थिंक मार्च अप्रैल में उसकी डेडलाइन होगी, वो आपसे जीआरई मांगेंगे, तैयारी कर लें, और उसके लिए वो मास्टर्स और पीएचडी दोनों के लिए होगा। इसके अलावा एचईसी बहुत ज़्यादा अभी स्कॉलरशिप दे रही है पीएचडी के लिए भी, अभी रिसेंटली आई थिंक डेडलाइन आ रही है यूएस की उनकी। फिर इसके अलावा अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही पोस्ट किया है, आयरलैंड गवर्नमेंट का स्कॉलरशिप आया हुआ है, दे आर आस्किंग फॉर द मास्टर्स, और इसके अलावा एक्सचेंज के लिए, पीएचडी के लिए, और इसके अलावा बड़े स्कॉलरशिप्स मिक्स्ड अभी आगे आएगा।
0: यूनिवर्सिटी रिकमेंडेड?
1: हाँ जी, दो साइड्स होती हैं उसकी, एक यूनिवर्सिटी होती है और एक एम्बेसी होती है, तो दोनों में से आपकी सब। कोरियन गवर्नमेंट का स्कॉलरशिप आएगा, वो भी दो साइड से आएगा, वो आई थिंक अनाउंस हो जाएगा फरवरी के मिड में ही, बल्कि जनवरी के एंड पे हो जाएगा, और उसके अंदर आप यूनिवर्सिटी साइड से और इसके अलावा आप एम्बेसी साइड से भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप कंट्री वाइज अगर आप पूछें तो जस्ट गोइंग ऑन लाइक यूरोप के अंदर मैंने आपको ओवरऑल का बता दिया, हर कंट्री के लहदा लहदा भी हैं। यूके का लोग बहुत ज्यादा है, कॉमनवेल्थ आता है उसका एचईसी टेस्ट लेती है, वो अभी हो गए हैं। कॉमनवेल्थ शेयर्ड है जिसका यूनिवर्सिटी करती है, सिलेक्शन करती है, और उसके थ्रू आप जा सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा यूके के अंदर डिस्टेंस बेस्ड का भी एक स्कॉलरशिप आता है अंडर द कॉमनवेल्थ, उस पर भी आप जा सकते हैं। कुछ एक्सपीरियंस लोगों के लिए भी आता है, कॉमनवेल्थ बहुत ज्यादा दे रहा है इस पे। यूके की अपनी यूनिवर्सिटीज भी देते हैं, लेकिन वो टॉप स्टूडेंट्स को देते हैं जिनकी सीजीपीए हाई हो, तो बिकॉज देयर इज अ कोर्स और प्रोग्राम। अच्छा, इसके अलावा अगर आप देखें तो पीएचडी का इटली का जो हमने बात की, दिस इज़ वन ऑफ द पीएचडी प्रोग्राम, ये अभी शुरू हो जाएगा मार्च अप्रैल मई जून में, यूनिवर्सिटीज़ वेरिएबल होंगी और हम जाएंगे नवंबर तक ऑलमोस्ट। इसका फाइल सिस्टम चलता है हमारे ग्रुप पे। इसके अलावा अगर आप देखें तो मैंने कोरिया का बता दिया, जापान का, चाइना, चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप आजकल ऑन है, आप इस पे मार्च तक अप्लाई कर सकते हैं। चाइना की बड़ी टॉप की यूनिवर्सिटीज़ हैं, अगर आप देखें दीज आर द यूनिवर्सिटीज़ इन टॉप रैंकिंग, इवन एमआईटी एक यूनिवर्सिटी यूएस रैंकिंग्स के अंदर को क्रॉस किया शिंगवा यूनिवर्सिटी ने, तो यू शुड फोकस ऑन द टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ एज वेल, क्योंकि ये उसी तरह है कि आप अगर यूएस के अंदर पढ़ रहे हैं यूनिवर्सिटी के अंदर या चाइना के अंदर, इट इज़ द सेम थिंग। तो चाइना के चाइनीज गवर्नमेंट के स्कॉलरशिप हैं, यूनिवर्सिटी के अपने भी आते हैं, और मैंने आपको बताया कि लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन, मैं इसके ऊपर जितना भी करता रहा हूँ
0: इट जस्ट गोइंग, घंटों गुफ्तगू हो सकती है। और एंड पे बिल्कुल हम क्योंकि आखिर में आ गए हैं, तो स्कॉलरशिप के वैसे तो आपने सारे आपका इंटरव्यू हुई प्रो टिप्स हैं, तो क्या आपकी जो है ना फाइनल वर्ड्स होंगे उन लोगों के लिए जो कि स्कॉलरशिप की ख्वाहिश रखते हैं और झिझकते हैं या जो भी उनकी है, उनको क्या फाइनल प्रो टिप होगी आपकी?
1: यही टिप होगी कि देखें अपने आपको फोकस करके, जब हमने स्कॉलरशिप का काम स्टार्ट किया था उस वक्त हमें और रास्ता ना, जॉब्स बहुत कम थी पाकिस्तान में, ई कॉमर्स का तो अभी बूम आना शुरू हुआ है, तो वी वर वो फोकसिंग कि हम पाकिस्तान अपने आप पे फोकस करें, यह आपकी लाइफ है, ये ना समझे मायूसी को बिल्कुल ना देखें, हम यहीं बैठे हैं आपके साथ, हम हर एक को जानते हैं कि मुझे नहीं पता किस गांव के अंदर बैठा हुआ ये वाकया असली है, किसी गांव में बैठा हुआ बच्चा है वो खुदकुशी करने जाया था और उसका फोकस सिर्फ यू नो ये स्कॉलरशिप्स थे और वी फोकसिंग ऑन दैट, के तो ये आपके लिए भी उम्मीद की एक राह है, इस पर फोकस करें, अपने आप को डिवेलप करें एज अ ह्यूमन बींग, और हम यहाँ मदद के लिए बैठे हैं, आप हमारे से मदद लें और अप्लाई करते रहें इस बाहर जाने के लिए, क्योंकि बाहर आप जाएंगे आपको एक्सपोजर होगा, आपको नज़र आएगा कि दुनिया कैसी चल रही है, आप खुद भी करेंगे और लोगों को पीछे फ़ायदा देंगे। और इसके अलावा अप्लाई करने के लिए एक और भी टिप मैं आपको बता दूँ, जिसे आप असाइनमेंट्स दोस्तों की कॉपी करके करते हैं, उसी तरह आप अप्लाई करने के लिए दोस्तों को भी अप्लाई करवाया करें, आप 6-7 बच्चों का अप्लाई करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन उससे बेहतर बन जाएगी, तो वो इकट्ठे मिलकर अप्लाई करें, दूसरों की हेल्प करें, हमारा भी यही फोकस है कि हम एक दूसरे की मदद करें, और आई एम श्योर कि वंस यू विल हेल्प यू विल बी हेल्प्ड एज वेल।
0: थैंक यू वेरी मच डॉक्टर वकार बेग, बहुत ही सेर हासिल गुफ्तगु हुई, और मैंने डॉक्टर वकार की जो बातों से जो सीखा पर्सनली स्कॉलरशिप के हवाले से, वो ये है कि आपने सबसे पहले आपके दिल में ख्वाहिश बेदार होनी चाहिए, फिर नंबर दो आप उस ख्वाहिश के लिए कोशिश करनी चाहिए, और नंबर तीन उस कोशिश को जब आप कोशिश करेंगे तो जिस तरह पोलो कोलो ने कहा था कि व्हेन यू रियली वांट टू डू समथिंग द होल यूनिवर्स कॉन्स्पायर्स फॉर इट, तो फिर स्कॉलरशिप नेटवर्क वाले ABC जो भी हैं दे ऑल विल कॉन्स्पायर इन फेवर ऑफ यू। तो यही आज का पैगाम है, हमें सुनते रहिए और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और अगर आपकी कोई स्पेसिफिक सवालात हैं तो वो भी हमें हमारे फेसबुक पेज पे आप बताएं, और जहाँ जहाँ भी जिस जिस मीडियम पर आप इसको सुन रहे हैं उस मीडियम का जो फीडबैक का मैकेनिज्म है उसको फॉलो करें और हमें बताएं, तो हम कोशिश करेंगे कि हम जो डॉक्टर वकार बेग हैं इनको कुछ महीने दो महीने बाद दोबारा पकड़ लें और एक ऐसा प्रोग्राम कर लें जो स्पेसिफिक सिर्फ आपके सवालात पर मबनी हो। तो ये उस वक्त ही मुमकिन होगा जब आप सवालात हम तक पहुंचाएंगे, प्रोग्राम का फीडबैक के ज़रिए अपने सवालात हम तक पहुंचाएं, हम कोशिश करेंगे कि वो सवाल जो है उन तक पहुंचाएं। और जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोग्राम मंजिल का हमारा फॉर्मेट ही ये है कि जो जिस मंजिल पे पहुंच चुका है वो मुसाफिरों को जो पीछे आने वाले हैं उनको रास्ता बताएं। तो आज हम इसको, मेरा ख्याल है कि आज हमने बाकायदा एक इसका हक अदा किया अपने प्रोग्राम के नाम का, और अपना फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। सुनते रहें FM 92.6। मैं अली अशरफ आपसे इजाज़त चाहता हूँ।

www.lucifer.edu.ek. FM 92.6 Life Station of the Nation.

डेंगू मच्छर पानी में जन्म लेता है, इसकी अफजाइश के मराहिल से मुकम्मल आगाही डेंगू के खात्मे के लिए जरूरी है। लिहाजा पानी की टैंकी और ड्रम वगैरह जिनमें साफ पानी हो अच्छी तरह ढांप कर रखें। इसके अलावा घर, दफातर, दुकानों और किसी जगह कूड़ा करकट या फालतू अशिया जमा ना होने दें। घरों में मच्छर मार और लार्वा कश केमिकल का स्प्रे करवाएं। इस्तेमाल शुदा बोतलों, प्लास्टिक के थैलों और इस्तेमाल शुदा टायरों में हर गिज पानी जमा ना होने दें। माहौल खुश्क और साफ, डेंगू से मुकम्मल निजात। ये पब्लिक सर्विस मैसेज महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर और यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब के ताबून से पेश किया जा रहा है।

0: मुझे डायबिटीज? मैं तो बड़ा फिट हूँ। डायबिटीज तो मोटे लोगों को होती है। हम तो खालिस खुराक खाते हैं, हमें नहीं होगी डायबिटीज।
1: डायबिटीज वो तो मीठा खाने से होती है, इसीलिए मीठा खाती नहीं।
0: डायबिटीज तो सिर्फ बुढ़ापे में होती है।
2: मैं भी यही सोचता था, मगर सच तो ये है कि पाकिस्तान डायबिटीज के हवाले से दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है। इसीलिए अपनी सेहत पर गौर करें। अगर आपको इनमें से कोई भी अलामत महसूस हो रहे हो तो फौरन अपने डॉक्टर से मशवरा करें। डायबिटीज वसाइल और आमदनी से नहीं बल्कि एक्शन से कंट्रोल हो, यानी मतवाजन गजा, रोजाना एक्सरसाइज और डॉक्टर की तजवीज की हुई दवा। याद रखिए, अगर डायबिटीज से जीतना है तो वक्त पर एक्शन लेना है।

0: नंबर वन रेडियो स्टेशन FM 92.6 यूसीपी की दुनिया, यूसीपी की दुनिया।
1: आलमी इदारा सेहत के हालिया अदाद व शुमार के मुताबिक 2.2 बिलियन अफराद आँखों के मसाइल से दो चार हैं। सूजी हुई लाल आँखें, मुसलसल सर दर्द, आँखों में दर्द, तेज रोशनी का चुपना, चीजों का डबल और धुंधला दिखाई देना बिनाई की कमजोरी की अलामत हो सकती हैं। ऐसी अलामत की सूरत में बिल्कुल लापरवाही न बरतें और फौरन करीबी अस्पताल से अपना मुआयना करवाएं। ये पब्लिक सर्विस मैसेज महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर की जानिब से पेश किया जा रहा है।
2: आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 यूसीबी की दुनिया, यूसीबी की दुनिया, यूसीबी की दुनिया।

0: तो सुनते रहिए FM 92.6 UCP की दुनिया।
1: अनचाही कॉल या पैगाम की शिकायत के लिए मुतालिका फोन नंबर्स के हमरा 9000 पर SMS करें। गुमनाम नंबर से आने वाली कॉल्स या SMS के जवाब में अपनी खुफिया जाती मालूमात हरगिज ना दें। BTA

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

0: मुझे डायबिटीज, मैं तो बड़ा फिट हूँ। डायबिटीज तो मोटे लोगों को होती है।
1: हम तो खालिस खुराक खाते हैं, हमें नहीं होगी डायबिटीज।
2: डायबिटीज वो तो मीठा खाने से होती है, इसीलिए मीठा खाती नहीं।
0: डायबिटीज तो सिर्फ बुढ़ापे में होती है।
3: मैं भी यही सोचता था, मगर सच तो ये है कि पाकिस्तान डायबिटीज के हवाले से दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है। इसीलिए अपनी सेहत पर गौर करें। अगर आपको इनमें से कोई भी अलामत महसूस हो रहे हो तो फौरन अपने डॉक्टर से मशवरा करें। डायबिटीज वसाइल और आमदनी से नहीं बल्कि एक्शन से कंट्रोल हो, यानी मतवाजन गजा, रोजाना एक्सरसाइज और डॉक्टर की तजवीज की हुई दवा। याद रखिए, अगर डायबिटीज से जीतना है तो वक्त पर एक्शन लेना है।
4: Broadcasting University Studios, where knowledge is empowerment. This is 92.6.
5: When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

www.lucifer.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

डेंगू मच्छर पानी में जन्म लेता है। इसकी अफजाइश के मराहिल से मुकम्मल आगाही डेंगू के खात्मे के लिए जरूरी है, लिहाजा पानी की टैंकी और ड्रम वगैरह जिनमें साफ पानी हो अच्छी तरह ढांप कर रखें। इसके अलावा घर, दफातर, दुकानों और किसी जगह कूड़ा करकट या फालतू अशिया जमा ना होने दें। घरों में मच्छर मार और लार्वा कश केमिकल का स्प्रे करवाएं। इस्तेमाल शुदा बोतलों, प्लास्टिक के थैलों और इस्तेमाल शुदा टायरों में हरगिज पानी जमा ना होने दें। माहौल खुश्क और साफ, डेंगू से मुकम्मल निजात। ये पब्लिक सर्विस मैसेज महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर और यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब के तआवुन से पेश किया जा रहा है।

0: मुझे डायबिटीज? मैं तो बड़ा फिट हूँ। डायबिटीज तो मोटे लोगों को होती है।
1: हम तो खालिस खुराक खाते हैं, हमें नहीं होगी डायबिटीज।
2: डायबिटीज वो तो मीठा खाने से होती है, इसीलिए मीठा खाती नहीं।
0: डायबिटीज तो सिर्फ बुढ़ापे में होती है।
3: मैं भी यही सोचता था, मगर सच तो ये है कि पाकिस्तान डायबिटीज के हवाले से दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है। इसीलिए अपनी सेहत पर गौर करें। अगर आपको इनमें से कोई भी अलामत महसूस हो रहे हो तो फौरन अपने डॉक्टर से मशवरा करें। डायबिटीज वसाइल और आमदनी से नहीं बल्कि एक्शन से कंट्रोल हो, यानी मतवाजन गजा, रोजाना एक्सरसाइज और डॉक्टर की तजवीज की हुई दवा। याद रखिए, अगर डायबिटीज से जीतना है तो वक्त पर एक्शन लेना है।

0: अगर कभी मेरी याद आए।
1: नशा न परेशानियां खत्म करता है, इसका जरूर हमेशा रहता है। ये एक लम्हे की कमजोरी है जो सारी जिंदगी का रोग बन जाती है। बातला इल्मी जहालत और हमाकत से शुरू होती है और सारे खानदान को तबाह कर देती है। ऐसी कोई खाने पीने लगाने या सरूर दिलवाने वाली अशिया का इस्तेमाल न करें जिसमें नशा हो। वालिदैन, असातिज़ा और दोस्त बच्चों पर नजर रखें। हंसी मजाक में की गई हरकत आपकी सांसें भी खत्म कर सकती है। नशे से इनकार, जिंदगी से प्यार। मंशियात की सरगर्मियों की रोकथाम के लिए हमारी हेल्पलाइन पर राबिता करें।

0: एक नया अंदाज,
1: एक नई सोच,
0: एक नई पहचान,
1: एक नई लगन।
0: यूसीबी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
1: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिबिल्म के किरदार से।
0: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की।
1: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP No. 1।
0: जब मिलती है लगन,
1: मेहनत,
0: कामयाबी और खुलूस,
1: तो बनती है
0: UCP की दुनिया।
1: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
0: सुनते रहिए।
2: अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया। अब मैं आपकी मेज़बान तहज़ीन अली आपको प्रोग्राम नख़्ले अदब में खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपका हफ़्ता बहुत अच्छा गुजरा होगा, बहुत पॉजिटिव गुजरा होगा, आपने कुछ नया किया होगा, और अगर कहीं पे नेगेटिविटी आई भी होगी तो आपने उसको पॉजिटिव तरीके से ही हल किया होगा। आज हमने अपने प्रोग्राम में जिस टॉपिक पर बात करनी है वो ज़रा हट के है। आज हम बात करेंगे स्पोर्ट्स जर्नलिज्म से मुतल्लिक, उनके मसाइल और कैसे वो बेहतर हो सकते हैं। और इसी सिलसिले में हमने आज जिनको अपने प्रोग्राम में दावत दी है, मोहम्मद वलीद खान, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। वलीद, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन माय शो। मुझे अंदाज़ा है कि कितनी टफ रूटीन है और आपने हमारे लिए टाइम निकाला, तो सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि आप हमारे ऑडियंस को अपने बारे में थोड़ा सा बताएं कि व्हाट आर यू डूइंग एंड अदर स्टफ।
3: बहुत शुक्रिया जी। बेसिकली मेरा जो ताल्लुक है वो शोबाए सहाफत से है, और जो है वो मैं काफ़ी अरसे से जर्नलिज्म कर रहा हूँ। 2017 में मैंने आगाज़ किया था, और उसके बाद जो है वो स्पोर्ट्स से मोहब्बत की वजह से, स्पोर्ट्स मैनशिप होने की वजह से और स्पोर्ट्स मैन होने की वजह से जो है मैंने इस फील्ड का इंतखाब किया कि मुझे सहाफत में जाना चाहिए। तो फिर सहाफत चलती रही और उसके साथ साथ दीगर चीज़ें भी साथ अटैच होती गईं, और प्रोडक्शन की तरफ भी ध्यान चला गया। प्रोडक्शन भी की और खूब की, पाकिस्तान

0: के लिए। तो अब जो है वो आजकल जो है वो प्रोडक्शन की तरफ भी रुझान है और सहाफत की जिम्मेदारियां भी निभाई जा रही हैं।
1: वलीद, आप स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हो, अगर हम सबसे पहले बात करें कि इस वक्त हमारी सहाफत में बहुत ज्यादा मसाइल हैं, तो व्हाट डू यू थिंक कि स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में इस वक्त क्या सबसे बड़े मसाइल हैं?
0: बेसिकली स्पोर्ट्स जर्नलिज्म जो है वो शायद बहुत से लोगों को लगता है कि बहुत आसान है। आजकल स्पोर्ट्स जर्नलिज्म को हम लोगों ने वन साइडेड जर्नलिज्म कर दिया है कि क्रिकेट जिसको आती है, क्रिकेट के जिसको दो चार खिलाड़ियों का पता है वो खुद को स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट कहने लग पड़ा है। लेकिन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट होना जो है वो एक बड़े एजाज की बात है, क्योंकि आपने इंटरनेशनल क्रिकेट को कवर करना होता है, इंटरनेशनल गेम्स को कवर करना होता है। जैसे हमारे खिलाड़ी अपने मुल्क के सफीर होते हैं, इसी तरह से हम जो हैं वो भी उन खिलाड़ियों को पोर्ट्रेट कर रहे होते हैं। तो बड़ी जिम्मेदारी का काम है ये कि आप किसी खिलाड़ी को पोर्ट्रेट कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की आगे बात होती है, पाकिस्तान का इमेज होता है। तो उस इमेज को भी देखते हुए पाकिस्तान की जो स्पोर्ट्स जर्नलिज्म है उसको जिम्मेदारी का मुजाहरा करना पड़ता है। बहुत से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जो हैं वो पाकिस्तान को मुख्तलिफ जो है वो गेम्स में भी रिप्रेजेंट कर चुके हैं, और बहुत से जर्नलिस्ट ऐसे हैं जो क्रिकेट देख के, क्रिकेट पढ़ के और क्रिकेट को समझ के सहाफत में आए हैं। तो ये जो है खेलों से ताल्लुक जो है एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट का, ये बहुत जरूरी है। जब तक एक जर्नलिस्ट का खेलों में इंटरेस्ट नहीं होगा वो उस तरह से सहाफत कर नहीं सकता। और दूसरी बात यह है कि एक सहाफी का काम होता है कि खबर देना। तो खबर जो है वो इतनी आसानी से मिलती नहीं है, खबर ढूंढनी पड़ती है। और खासकर बहुत सी खबरें ऐसी आती हैं जिनको हमें रोकना पड़ता है कि इसमें पाकिस्तान का नाम है, पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं, उनको जो है वो उनका इमेज है एक चीज। तो हमें उस चीज को बड़ी जिम्मेदारी से जो है वो निभाना होता है, उस खबर को भी आगे आवाम तक पहुंचाना होता है। आजकल आपने मसाइल की बात की, तो सहाफत में ओवरऑल बहुत ज्यादा मसाइल हैं। सहाफत में जो है वो कुछ इदारों की तरफ से भी मसाइल हैं, कुछ हुकूमती नुमाइंदे उनकी तरफ से भी मसाइल हैं, और बहुत से फैक्टर्स हैं जो कि सहाफत में गलबा पा चुके हैं। तो मेरे ख्याल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट को मसाइल एज सच इस तरह से हैं कि बहुत से सहाफ़ी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जाके सहाफत की जिम्मेदारियां निभाते हैं उन पर पाबंदियां आजकल आयद करना शुरू कर दी गई हैं, उनको जो है वो मैचेस कवर करने से रोक दिया गया है। तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ा मसला आजकल सहाफ़ियों को तो यही दरपेश है कि वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो पाबंदियाँ लग रही हैं उनका सामना कर रहे हैं और उनके लिए मुज़ाहमत भी कर रहे हैं।
1: आपने बात की थी कि स्पोर्ट्स सहाफत के लिए ज़रूरी है कि सहाफत पढ़ी जाए, तो आपको क्या लगता है कि जो स्पोर्ट्स जर्नलिज्म करते हैं उनके लिए ज़रूरी है कि वो फिजिकल एजुकेशन या स्पोर्ट्स में बाकायदा तालीम लेके आएं?
0: बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया इसमें कि क्या खेलों में उनका इंटरेस्ट, उनको खिलाड़ी भी होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से खिलाड़ी होना ज़रूरी नहीं है, आपको एज अ जर्नलिस्ट भी जो है उस चीज़ को सीखना चाहिए। हाँ, अगर आप खिलाड़ी होंगे तो वो बहुत एक पॉजिटिव चीज़ है कि आपको रूल्स पता होंगे गेम के, आपको पता होगा कि इतने आउट हैं, इतनी बॉल साइड्स हैं, इतनी चीज़ें हैं, टेक्निकल चीज़ें आपको पता होंगी। तो एक खिलाड़ी के लिए सहाफत में जाना भी एक एजाज़ की बात है, और जब तक एक सहाफ़ी जो है वो प्रॉपर तरीके से स्पोर्ट्स को देखेगा नहीं, स्पोर्ट्स को समझेगा नहीं, तो उसको उस तरह से सहाफत आएगी नहीं। आजकल हमारे जर्नलिस्ट भी जिसके पास एक कैमरे वाला फ़ोन है और एक अच्छा ट्विटर अकाउंट है तो वो उसको जो है वो अब खुद को सहाफ़ी कहने लग पड़ता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो ट्विटर पे बैठे हुए हैं, जो यूट्यूब पे बैठे हुए हैं, व्लॉग्स करते हैं, तज़िये देते हैं अपने, लेकिन जो एक क्रिकेट एक्सपर्ट का तज़िया है, जो एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट का तज़िया है, वो उनसे बहुत मुख्तलिफ होता है। ये आपने भी ऑब्जर्व किया होगा।
1: बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया कि स्पोर्ट जर्नलिज्म के क्या मसाइल हैं। यहाँ पे वक्त हुआ एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, सुनते रहिए एफएम 92.6 यूसीपी की दुनिया।
2: जदो राती चन्न निकल दाए, जदो काले पत्तल छाउंदे ने इस बे

0: ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की। तो सुनते रहिए एफएम 92.6 यूसीपी की दुनिया।
1: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं एफएम 92.6 यूसीपी की दुनिया। हम बात करें स्पोर्ट्स जर्नलिज्म पे, उनके मसाइल के बारे में, और हम उनके हल पे भी बात करेंगे। वलीद, मैंने जितना ऑब्जर्व किया है कि स्पोर्ट्स जर्नलिज्म के अंदर, खास तौर पर पाकिस्तान के अंदर, उतनी रिप्रेजेंटेशन नहीं है। बीइंग अ मेल, आप कैसे देखते हो इन सब चीज़ों को?
2: बिल्कुल, आपने दुरुस्त पॉइंट उठाया मीडिया का। और मीडिया हाउसेस में जो है वो ख्वातीन की नुमाइंदगी होती है और एक हद तक होती है। बहुत से लोग जो हैं वो रिपोर्टिंग सेक्शन में नहीं जाती ख्वातीन। उसकी वजह ये होती है कि आजकल की जो हमारी यंगस्टर हैं वो कहते हैं कि हम चौक पे खड़े होके माइक पकड़ के और बता रहे होंगे तो शायद कोई हमारी तस्दीक हो रही होगी। तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई चीज़ है मीडिया में। अगर आप प्रोफेशनल हैं तो आपको हर बीट में जाना चाहिए, ना कि आप सोचें कि मैंने क्राइम नहीं लेनी, मैंने ये सियासी बीट नहीं लेनी, मैंने स्पोर्ट्स नहीं लेनी, मैंने एक इन हाउस लेना है। बहुत सी हमारी ख्वातीन है जिनको चाम है कि हम टीवी पे आए बस, वो टीवी के पीछे जो एफर्ट हो रही होती है ना उसको नहीं देखती। आप जितनी भी सीनियर रिपोर्टर्स देख लें, जिसमें सीनियर जर्नलिस्ट देख लें, एंकर्स, जिसमें नसीम जारा है वो भी पहले रिपोर्टर थी, अबसा कोमल कर रही है वो भी रिपोर्टर थी, गरीदा फरूकी भी रिपोर्टर थी, तो जितनी भी सीनियर आई उन्होंने झिझकचाहट का मुजाहरा नहीं किया कि वो कौन सी बीट कर रही है, क्या कर रही है, क्या नहीं। वो हिचकिचाहट के बगैर जो है वो गई और उन्हें जाके अपना काम किया, क्योंकि वो प्रोफेशनल्स थी। आजकल हमारी जो यंगस्टर लॉट है वो शायद समझती है कि जर्नलिज्म इज टिकटॉक। तो ये टिकटॉक से निकल के जब सड़कों पे जाके आप खवार नहीं होंगे, आप खबर के लिए नहीं कोना कोना जो है वो देखेंगे कि मुझे खबर कहाँ से मिल रही है, तब तक आप सहाफी नहीं बन सकते। अच्छा। मैं टीवी के सामने बैठ के पढ़ा लिखा हुआ पढ़ सकता हूँ, कोई बच्चा बिठा लेंगे वो भी पढ़ सकता है, तो फिर मैं सहाफी किस चीज़ का हूँ जब देख के ही पढ़ना है मैंने। जब आप रिपोर्ट में जाते हैं, रिपोर्टिंग में जाते हैं, आज भी आप सीनियर सहाफियों को देखते हैं जिसमें बड़े बड़े नाम हैं, वो अपने साथ ना रिपोर्टर लगाना पसंद करते हैं, वो एंकर पर्सन लगाना पसंद नहीं करते। क्योंकि जर्नलिस्ट वही होता है मेरे ख्याल में, ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, कि जो रिपोर्टिंग करता है। जब तक आप खबर नहीं निकालेंगे आप सहाफी नहीं है, और खबर भी क्रेडिबल सोर्सेज से। ये नहीं कि अच्छा आज वो मुझे पता चला है कि बाबर आजम की कल शादी है तो मैं वो तमाम टीवी चैनल्स पे चला दूंगा और बाद में पता लगेगा, ये तो है ही नहीं। तो मेरे ख्याल से जो वेमेन रिप्रेजेंटेशन है वो स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में एटलीस्ट होनी चाहिए। अभी आप अगर पूरे लाहौर के चैनल देखें या पूरे पाकिस्तान के भी अगर मैं आपको बता दूं, तो हमारे पास मेरे ख्याल से 12 से 13 लड़कियां हैं जो एज अ रिपोर्टर काम कर रही हैं। उसके अलावा हमारे पास कोई पूरे पाकिस्तान में लड़की नहीं है जो स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में काम कर रही है। 12 भी मैं वो रैंडम फिगर बता रहा हूँ, इससे शायद कम ही है। तो मैं जो लाहौर में है वो तो एक है, हादिया फयाज, वो एक्स क्रिकेटर भी रही हैं, तो वो इस वजह से स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में आ गई और वो स्पोर्ट्स जर्नलिज्म कर रही हैं। इससे पहले भी बड़ी सीनियर रिपोर्टर्स निकली लेकिन वो उस तरह से जो है वो कामयाब नहीं हो सकी रिपोर्टिंग फील्ड में। लेकिन जो एक नाम है जिसको मैं कभी नहीं भूल सकता, वो चैनल 5 की रिपोर्टर हैं सदफ, जिनका एक हादसे में इंतकाल हो गया। वो एक पैशनेट जो है वो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट थी और वो पैशनेट स्पोर्ट्स रिपोर्टर थी। तो वो बहुत सी ख्वातीन की आइडियल हैं, लेकिन क्या हम उनको एक प्रोजेक्शन नहीं दे पा रहे? क्योंकि हम सहाफ़ियों की प्रोजेक्शन नहीं होती, हम उनको एक प्रोजेक्शन ये नहीं दे पा रहे कि वो हमारा नाम था। हमने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बोर्ड पे तो उनका नाम लिखवा दिया, लेकिन उसके बाद ना उनकी बरसी पे कुछ किसी ने उनको याद किया, ना किसी ने उनको कोई इवेंट पे याद किया। हाँ ठीक है, एक नाम लिखा गया, दैट्स इट। तो मेरे ख्याल से ख्वातीन की प्रोजेक्शन के लिए, मीडिया में प्रोजेक्शन के लिए, ये ज़रूरी है कि आप उनको उनकी आइडियल्स दिखाएं कि ये आपकी आइडियल्स हैं। आपकी आइडियल्स टिकटॉक नहीं है, आपकी आइडियल्स ये रिपोर्टर्स हैं जो फील्ड में जाके हर मुश्किल का मुजाहरा करने के बाद एक अच्छी रिपोर्ट तैयार करती है, एक अच्छी खबर आप तक पहुंचाती हैं।
1: अच्छा, आपने शायनेस की बात की, ये स्पोर्ट्स एक मेल डोमिनेंट स्पोर्ट है। व्हाट डू यू थिंक के जो हरेसमेंट के केसेस होते हैं फीमेल रिपोर्टर्स के साथ, या जो मीडिया बॉक्सेस में लड़कियां बैठती हैं यहां वहां पे बैठने वाली लड़कियों से, तो वो भी तो एक प्रॉब्लम है फीमेल्स के लिए।
2: बिल्कुल, आपने बड़ी अच्छी बात की, हरेसमेंट जो है अभी तक मैंने अपने मीडिया बॉक्सेस में नहीं देखी। दे आर लाइक बॉयज टू अस, और हम उनसे स्ट्रेट जो हम सहाफ़ी या प्रोफेशनल गुफ्तगू जो हैं वो करते हैं, हम कोई इसमें वो चीज़ नहीं, कोई वो नहीं करते, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते कि यार ये खातून है ये क्या है। जब वो फील्ड पे हमारे साथ मुकाबले में खड़ी है तो वो एक खातून नहीं रहती, वो एक प्रोफेशनल सहाफ़ी बन जाती है। तो मेरे ख्याल से ये जो बहुत सा प्रोपोगंडा चलता है कि जी वो मीडिया रिपोर्टिंग में हरासमेंट बहुत ज़्यादा है, तो मेरे ख्याल से मीडिया रिपोर्टिंग में ही हरासमेंट सबसे कम है। हाँ, आप इन हाउस कह सकते हैं, बहुत से मामलात होते होंगे, मुझे नहीं पता इन चीजों का, लेकिन एज अ रिपोर्टर जो हमारे साथ काम किया है मीडिया बॉक्सेस में, लाहौर का भी मैंने शेयर किया, कराची का भी किया, मुल्तान का भी किया, रावलपिंडी का भी किया, तो मुझे ऐसा कहीं भी 1% चीज भी नहीं नजर आई कि कोई रिपोर्टर उठ के किसी रिपोर्टर को हैरेस कर रहा है। अगर गुफ्तगू हो रही है फोन के ऊपर, खबर लेने के लिए हो रही है, ग्रुप्स हैं खबर लेने के लिए, ग्रुप्स में है खबर आती है, हमारे बहुत से ग्रुप्स हैं जिसमें खवातीन ऐड हैं, स्पोर्ट्स रिपोर्टर्स ऐड हैं, तो हमने नहीं देखा आज तक कि किसी ने कंप्लेन की हो कि यार ये मुझे हैरेसमेंट कर रहे हैं, ये मुझे हैरेस कर रहे हैं, क्योंकि हर सिटी की अपनी एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन भी है, तो उसमें भी आज तक रिपोर्ट नहीं आई कि किसी ने हैरेस किया है, किसी ने इस तरह किया। मेरे ख्याल से काफी प्रोफेशनल्स हैं, और आगे भी आप देखें कि एक मैच्योर जो है जर्नलिस्ट, एक मैच्योर पर्सन होता है और उसको पता होता है कि अखलाकियात क्या है, क्योंकि वो एक रोल मॉडल होता है बहुत से लोगों के लिए जो, क्योंकि वो टीवी पे आ रहा होता है। तो मेरे ख्याल से ऐसे मामलात सुनने में तो जरूर अच्छे लगते होंगे, लेकिन अभी तक होते या किसी से हमने नहीं सुना कि जी ये चीज़ें, हाँ ऑडियंस को बड़े अच्छे लगते होंगे कि जी अब मैंने अपनी बेटी को जी रिपोर्टिंग में नहीं भेजना क्योंकि इसमें हरासमेंट होती है। ये आज की इस दुनिया में एक मैच्योर जो है वो दुनिया में एक जेन जी के दौर में आप ये कह रहे हैं कि जी हरासमेंट हो रही है, मेरा नहीं ख्याल, आपकी माशाल्लाह खवातीन को हर चीज़ पता है और वो बेहतर तरीके से डिफेंड कर लेती हैं अब अगर कोई उनको इस तरह के मामलात में इन्वॉल्व करे तो।
1: बिल्कुल ठीक है, आपने इस पर हम मजीद गुफ्तगू भी करेंगे। अभी वक्त हुआ एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, सुनते रहिए FM 92.6 UCP की दुनिया।

0: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं FM 92.6 यूसीपी की दुनिया। हमने बात की स्पोर्ट्स जर्नलिज्म पे, उनके मसाइल पर, वुमेन रिप्रेजेंटेशन पर। अब अगर हम बात करें कि बहुत से खिलाड़ी ऐसे हैं जो इस वक्त जर्नलिज्म की दुनिया में आ गए हैं और अब वो आके हर मैच के बाद अपना तबसरा दे रहे होते हैं, तो अगर आप एक हल्का सा कमेंट कर दें कि आपका उसके बारे में क्या ख्याल है।
1: बिल्कुल, आपने कहा कि खिलाड़ी आ गए हैं जो कि सोशल मीडिया पे बैठ के तबसरे कर रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल से सोशल मीडिया ही जो है वो फसाद की जड़ है। मैं इस चीज़ पे जो है वो राय रखता हूँ ये वाली कि सोशल मीडिया ही फसाद की जड़ है। वो इसलिए भी, शायद ये मेरे खिलाफ भी जाए कि आज की दौर में आप डिजिटल मीडिया के स्टूडेंट्स हो के तो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में बैठ के और डिजिटल मीडिया के ऊपर बात कर रहे हैं उसके खिलाफ। लेकिन एक चीज़ ये है कि आप जब सोशल मीडिया का यूज़ गलत करेंगे ना तो बहुत नुकसान देगा, और हमारी 80% आवाम उसका गलत इस्तेमाल कर रही है। मैं बैठा हूँ, मैं टीवी पे बैठा हुआ हूँ, तो मुझे जिम्मेदारी है कि मैंने ये अल्फाज कहना है, ये नहीं कहना, ये मेरे टीवी पे जाएगा, ये मेरी आवाम को जाना चाहिए और ये नहीं जाना चाहिए। क्या मैं इस खिलाड़ी पे तबसरा कर सकता हूँ, क्या मैं नहीं कर सकता? लेकिन सोशल मीडिया पे बैठ के मैं जब तक तनकीद नहीं करूंगा, जब तक मैं गालम गलोच नहीं करूंगा, मुझे व्यूअरशिप नहीं मिलेगी। हमारे बहुत से साबिक क्रिकेटर्स जो हैं वो इस रुझान की तरफ आ चुके हैं कि वो सोशल मीडिया चैनल्स बनाते हैं, चैनल्स बनाने के बाद वो बकायदा उसके ऊपर जो है वो तबसरे करते हैं कि पाकिस्तान की इस खिलाड़ी को ये है, इस खिलाड़ी को ये, और गलत अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। तो अगर ये लोग चैनल पे बैठे हों तो शायद ये लोग उस तरह के अल्फाज ना इस्तेमाल करें। हमने बहुत से खिलाड़ी ऐसे देखे हैं जो टीवी पे बैठ के तो बड़ी जिम्मेदाराना बात करते हैं, जब वो सोशल मीडिया पे जाते हैं तो वो जिम्मेदाराना बात उनकी ख़त्म हो जाती है, वो व्यूअरशिप के लिए बात करने लग पड़ते हैं। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि वो टीवी पे बैठ के तो बड़े महज़ब तरीके से खिलाड़ियों को बैक भी कर रहे होते हैं, तनकीद भी कर रहे होते हैं, लेकिन जब उनके YouTube चैनल पे जाएंगे तो उनके थंबनेल से आपको ये तासुर जा रहा होता है कि इसने तो इस वीडियो में उड़ा दिया इस खिलाड़ी को। तो हमारा जो सोशल मीडिया है उसका हमारे खिलाड़ियों पर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। अब अगर एक खिलाड़ी परफॉर्मेंस नहीं दे रहा और उसके ऊपर बकायदा ट्रेंड्स चल रहे हैं, वो ट्रेंड्स हम जैसे सहाफ़ियों को मिला के ही चलाए जाते हैं, वो सहाफ़ी ही ट्रेंड्स चलाते हैं क्योंकि उनकी ट्विटर पे रीच होती है, तो वो सहाफ़ी बैठ के जो है वो ट्विटर ट्रेंड सेट करते हैं और अपनी मर्जी के खिलाड़ी को मॉडिफाई कर देते हैं, जो कि गलत है। आपको पाकिस्तान की बात करनी चाहिए, आपको हर खिलाड़ी की बात करनी चाहिए। तो जब सोशल मीडिया अफेक्ट कर रहा है हमारे खिलाड़ियों को, इवन कि हमारी टीम सिलेक्शंस को भी इफेक्ट करता है। हम अब बहुत सी चीज़ें ऐसी देख रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड छुपाता है, वो नहीं बताता मीडिया को कि ये चीज़ें सोशल मीडिया पर आ जाएंगी, खिलाड़ियों पर गलत चीज़ का तासुर जाएगा। इसकी लेटेस्ट जो अभी मिसाल वो ये है कि एक वाकया हुआ है इंग्लैंड में, और उस वाक्य के ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तबसरा नहीं किया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उस वाक्य पे ये कहा कि हम उस वाक्य को लीगल असिस्टेंस देंगे अपने प्लेयर को, उसके बाद वो जो भी अदालत का फैसला होगा हम उसके ऊपर बात करेंगे। तो मेरे ख्याल से बड़ी पॉजिटिव चीज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शो की है और अपने सोशल मीडिया को तमाशा बनाने नहीं दिया। सोशल मीडिया पे जब तमाशा चीज का बनता है तो वो खिलाड़ी के लिए भी नुकसानदेह होता है और एक इंस्टीट्यूट के लिए भी नुकसानदेह होता है। तो मेरे ख्याल से सोशल मीडिया का एक रोल तो है हमारी लाइफ के ऊपर, उसको अगर हम पॉजिटिव तरीके से देखें और पॉजिटिव ही रखें तो ये बहुत जो है वो इफेक्टिव भी होगा और हमारे सोशल मीडिया यूजर्स के लिए भी फायदेमंद होगा कि वो पॉजिटिव तरीके से उसको यूज करेंगे। क्योंकि व्यूअरशिप जो है, हमने शायद अनफॉर्चुनेटली अपनी व्यूअरशिप को ये आदत डाल दी है कि हम तनकीद करेंगे तो आप हमें देखें, अगर हम तनकीद नहीं कर रहे तो आप हमें ना देखें। हमें क्वालिटी ऑफ कॉन्टेंट देना चाहिए, क्वान्टिटी ऑफ कॉन्टेंट नहीं देना चाहिए।
0: और इसी में फैन पेजेस को कैसे देखते हैं आप?
1: बिल्कुल, आपने फैन पेजेस की भी बात की है। अब तो फैन पेजेस जो है वो बहुत से फैंस बना लेते हैं और वह जनून की हद तक होते हैं। तो वो बहुत से लोग जो होते हैं, वो क्रिकेटर्स जो होते हैं ना, वो खुद भी फीड कर रहे होते हैं कहीं ना कहीं उन फैन पेजेस को, उनके भाई बहनों दोस्तों ने बनाए होते हैं, फैमिली ने बनाए होते हैं, तो वो उनको फीड भी कर रहे होते हैं। जो खिलाड़ी खुद नहीं ना बात करना चाहता, वो उनका फैन पेज बात कर देता है और उसके बाद वो बात जो है वो सोशल मीडिया की जीनत बन जाती है और वो बात निकलते निकलते पता नहीं कहाँ तक चली जाती है। तो मेरे ख्याल से फैन पेजेस को भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए और फैन पेजेस को क्रिकेटिंग नॉलेज पे बात करनी चाहिए, क्रिकेट सेंस पे बात करनी चाहिए, ना कि क्रिकेटर्स चाम के ऊपर बात करनी चाहिए। तो जब तक आप क्रिकेटर्स के चाम में मुब्तला होंगे तो ना आप सहाफ़ी हैं, ना आप कोई एंकर पर्सन हैं, ना आप कोई ऐसी सोर्स हैं जिसपे के ऊपर ट्रस्ट किया जाए क्योंकि आप हमेशा बात करेंगे तो उस खिलाड़ी की फेवर में बात करेंगे, आप उसके फैन बन के बात करेंगे। तो मेरे ख्याल से एक सहाफी न्यूट्रल होता है और उसको न्यूट्रल ही रहना चाहिए, ना कि किसी प्लेयर की साइड लेनी चाहिए, किसी प्लेयर को सपोर्ट करना चाहिए, जो देख रहा है उसके ऊपर बात करते हैं।
0: हमने बात तो की थी प्रॉब्लम्स के बारे में, अगर मैं आपसे लास्ट पे कमेंट लेना चाहूँ कि आप क्या देखते हैं कि इसका हल क्या है वुमेन रिप्रेजेंटेशन का और जो प्रॉब्लम्स हैं स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में।
1: बिल्कुल, वुमेन रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए और इसके लिए आपको इंटरेस्ट पैदा करना पड़ेगा स्पोर्ट्स में, जो कि हमारी बहुत सी खवातीन में स्पोर्ट्स का इंटरेस्ट नहीं है, प्लेयर्स का चार्म जरूर मौजूद है। जब तक आप स्पोर्ट्स का इंटरेस्ट नहीं लेंगे आप उस फील्ड में नहीं आ सकते। ये इसका एक प्रॉपर, आप देखें कि प्रॉपर सब्जेक्ट है स्पोर्ट्स जर्नलिज्म का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ये नहीं पढ़ाया जाता, क्योंकि पाकिस्तान में समझा जाता है कि स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में बहुत कम लोग जाते हैं। खैर, अब तो जर्नलिज्म भी बहुत से लोग अवॉइड कर रहे हैं जर्नलिज्म में जाने के भी, और बहुत से लोग इस सब्जेक्ट को चूज ही नहीं करते कि नहीं जर्नलिज्म तो एक लिमिटेड सोर्स है। तो मेरे ख्याल से जर्नलिज्म को प्रमोट करना चाहिए, जर्नलिज्म में जाना चाहिए और स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में खास तौर पर जाना चाहिए। ये मेरी नज़र में ये सबसे सेफ बीट है खवातीन के लिए, क्योंकि इसमें स्पोर्ट्स एक्टिविटी है और वैसे ही एक एनर्जेटिक है, तो हमें स्पोर्ट्स की तरफ इन खवातीन को लाना चाहिए और खवातीन को स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में फोकस करवाना चाहिए, ना कि दीगर बीट्स में जाएं या इन हाउस काम करें। आए आके काम करें, बहुत सी नौजवान खवातीन हैं जो कि स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बनना चाह रही हैं और वो काम भी कर रही हैं और हमसे शायद अच्छा काम कर रही हैं, तो उनको मौका मिलना चाहिए और उनका माइंड जो है वो स्पोर्ट्स जर्नलिज्म की तरफ होना चाहिए। हमारी एक अनफॉर्चुनेटली बात ये भी है कि हम जब स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में जाते हैं खवातीन खासकर, तो उनके माइंडसेट में आ जाता है कि मैं इस प्लेयर की मीडिया मैनेजर लग जाऊं, इस टीम की मीडिया मैनेजर लग जाऊं। तो वो मीडिया मैनेजरशिप से निकल के स्पोर्ट्स रिपोर्टर बनना चाहिए, ना कि आपको मीडिया मैनेजर और उस प्लेयर की प्रोफाइलिंग में लग जाना चाहिए, आपको उस फील्ड के साथ खेलना चाहिए।
0: थैंक यू सो मच वलीद, आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया प्रॉब्लम्स को भी और उनके हल को भी, एंड यू आर डूइंग टू गुड, बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू फॉर बीइंग ऑन माय शो, उम्मीद है आपको शो पसंद आया होगा। नेक्स्ट प्रोग्राम में किसी नए गेस्ट के साथ नए मौजू पर गुफ्तगू होगी। सुनते रहिए FM 92.6 UCP की दुनिया। खुदा हाफिज़।

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCB की दुनिया।

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Union.

0: डेंगू मच्छर पानी में जन्म लेता है। इसकी अफजाइश के मराहिल से मुकम्मल आगाही डेंगू के खात्मे के लिए जरूरी है, लिहाजा पानी की टैंकी और ड्रम वगैरह जिनमें साफ पानी हो अच्छी तरह ढांप कर रखें। इसके अलावा घर, दफातर, दुकानों और किसी जगह कूड़ा करकट या फालतू अशिया जमा ना होने दें। घरों में मच्छर मार और लार्वा कश केमिकल का स्प्रे करवाएं। इस्तेमाल शुदा बोतलों, प्लास्टिक के थैलों और इस्तेमाल शुदा टायरों में हर गिज पानी जमा ना होने दें। माहौल खुश्क और साफ, डेंगू से मुकम्मल निजात। ये पब्लिक सर्विस मैसेज महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर और यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब के तआवुन से पेश किया जा रहा है।
1: When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Duniya.

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Union.

आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCB की दुनिया।

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Tuning.

0: And now, you are going to listen an exclusive documentary on 92.6 FM UCP Ki Duniya.
1: भूख चेहरे पे लिए चांद से प्यारे बच्चे बेचते फिरते हैं गलियों में गुब्बारे बच्चे हो गया चर्ख सितमगर का कलेजा ठंडा मर गए प्यास से दरिया के किनारे बच्चे बच्चे उम्मीद की किरण और जिंदगी की नवीद होते हैं इनके हंसते मुस्कुराते चेहरे और जगमगाती आंखों से ख्वाब नजर आते हैं इनकी हंसने की झनकार हमारे चेहरों पर मुस्कान और घरों में रौनक बिखेर देती है इनकी नन्ही नन्ही शरारतें आपके अंदर जीने की उमंग पैदा करती हैं इन्हीं की वजह से आपके घर में रौनक और जीने का हुस्न नजर आता है ये नन्हे तारे बाज औकात आपके लिए मशले राह और जिंदगी गुजारने का मकसद बन जाते हैं बच्चे तो रयाकारी से पाक होते हैं लेकिन बाज औकात हालात रहन सहन और तर्ज जिंदगी इनको अपने अपने रंग में रंगती चली जाती है
2: हम सुबह सुबह घर से आ जाते हैं तो इधर आके हम शहर पे काम करते हैं हमारे घर का किराया नहीं पूरा होता इसलिए किराया दे नहीं सकते इसका किराया भी 5,000 रुपये हम इसलिए काम करते हैं हमारी मम्मी कहती है 1,000 रुपये चले जाओ उधर काम कर लो अब मजदूर है वो भी नहीं कर सकते इसलिए हम कुछ करके हम साथ में मिल के जो होता है हम घर की आमदनी चला लेते हैं जो हम काम कर देते हैं ऊपर से पकड़ने वाले आए थे जो पैसे होते हैं वो ले जाते हैं और हम जो सारे दिन की मेहनत होती है उन पर पानी पेट जाते हैं जो भी होते हैं हम फिर भी छोड़ देते हैं हम कहते हैं अल्लाह का नाम है छोड़ दो हमें कोई की जब गाड़ी साफ कर रहे होते हैं तो कोई 10 रुपये कोई 20 दे रहे कोई देता नहीं जो अच्छे लोग होते हैं वो दे जाते कोई देते नहीं इसलिए हम अल्लाह का शुक्र है कभी घर का सरकट चल जाता है
0: और इसी तरह ये बच्चे नन्हे पौधे

0: दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।
1: ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की, तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

0: लड़कियों के साथ जिंसी तशद्दुद अक्सर हमारे सामने हो रहा होता है। डरे नहीं और चीख के कहें,
1: खबरदार, छूना मना है।
2: मजीद तफसीलात के लिए राब्ता कीजिए 1099 पर।
3: If you want to stay connected to the latest updates of your country, stay connected to University of Central Punjab FM 92.6 UCP ki duniya.

0: If you want to stay connected to the latest updates of your country, stay connected to University of Central Punjab FM 92.6 UCP Ki Duniya.
1: अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आपकी होस्ट आमना महमूद, मुखातिब हूं आपसे FM 92.6 यूसीपी की दुनिया से। लिसनर्स, जरा सोचिए, अगर आज का स्टूडेंट अपनी स्पीड और अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कहीं भी और कहीं से भी सीख सके, अगर क्लासरूम्स सिर्फ चार दीवारी तक महदूद ना रहें और टेक्नोलॉजी हर लर्नर की जरूरत को समझकर उसे रहनुमाई फ्राहम करे, तो एजुकेशन कैसी नजर आएगी। आज हम इसी दिलचस्प और तेजी से उभरते हुए कॉन्सेप्ट एजुकेशन 2.0 और फ्यूचर ऑफ लर्निंग पर बात करेंगे। हम जानेंगे कि एजुकेशन किस तरह एक नए दौर में दाखिल हो रही है, जहां टीचर्स सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर नहीं बल्कि मेंटर्स बन रहे हैं, स्टूडेंट पैसिव लिसनर्स की बजाय एक्टिव लर्नर्स बन रहे हैं और टेक्नोलॉजी सीखने का सफर को ज्यादा मीनिंगफुल और पुर असर बना रही है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सर मोहम्मद बासित अली गिलानी साहब, जो कि यूसीपी एफवाईटी के कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में सीनियर लेक्चरर हैं और आप 12 साल से ज्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस रखते हैं और इसके अलावा इंडस्ट्री में एज डेटाबेस डेवलपर भी काम कर चुके हैं और इसके साथ साथ 100+ अंडर ग्रेजुएट फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स में स्टूडेंट को गाइड भी कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सर।
2: वालेकुम सलाम।
1: सर, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। सर, वक्त ज़ाय किए बगैर अपने सवालात का आगाज करते हैं। सर, आजकल एक टर्म बहुत ज्यादा सुनने को मिलती है, एजुकेशन 2.0। आप हमारे लिसनर्स को आसान अल्फाज में बताएं कि एजुकेशन 2.0 का कॉन्सेप्ट क्या है और ये ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम से किस तरह डिफरेंस रखती है।
2: अच्छा मैडम, ये है कि जो एजुकेशन 2.0 है, इससे मुराद हम ये लेते हैं कि जो हमारे मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है
1: जी।
2: एक हमारे पास होता है ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम, जो कि टीचर सेंटर्ड ज्यादा होता है, टीचर ओरिएंटेड ज्यादा होता है।
1: बिल्कुल।
2: एक क्लासरूम है, क्लासरूम में हम 30-40-50 स्टूडेंट्स को बैठा देते हैं, टीचर्स हैं, लेक्चर्स डिलीवर करते हैं, नोट शेयर करते हैं।
1: बिल्कुल।
2: अब वो जो एक ग्रुप बन गया 30-40 स्टूडेंट्स का, अब टीचर ने उन सबको जब पढ़ाना स्टार्ट कर देना है, उसका फोकस जितना मर्जी कोशिश करे, एक स्टूडेंट कभी नहीं होगा।
1: बिल्कुल।
2: उसका जो फोकस यही होगा कि मेरा टॉपिक क्या है, आज मैंने डिलीवर क्या करना है। वो टारगेट लेके बैठा हुआ है 30-40 स्टूडेंट्स का कि मैंने इतने स्टूडेंट्स को अपना टॉपिक एक्सप्लेन करना है।
1: बिल्कुल।
2: ये हो गया टीचर सेंटर्ड। टीचर सेंटर्ड क्यों? क्योंकि उस ग्रुप में से अगर किसी एक को समझ में नहीं आया, किस दूसरे को समझ नहीं आया, या फिर सबका इंटेलिजेंस लेवल, सबका अंडरस्टैंड

0: लिंग लेवल सेम तो नहीं है, जब उनका लेवल सेम नहीं है तो वो एक ही लेक्चर सबके लिए कैसे हो सकता है। हमारे पास यहाँ पे यूनिवर्सिटीज के अंदर 2.0 CGPA वाले स्टूडेंट भी हैं और 3.99 CGPA वाले स्टूडेंट्स भी हैं। अब हम एक लाइन में एक्सप्लेन करें, 3.99 CGPA वाला स्टूडेंट बहुत इजीली पिक करेगा क्योंकि वो पहले भी प्रैक्टिस करके या सीख के आया है,
1: उसका
0: कैलिबर डिफरेंट है उसका।
1: बिल्कुल।
0: जबकि जो हमारे पास 2.0 वाला जो स्टूडेंट है उसकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी लो पेस पे चल रही है।
1: बिल्कुल।
0: उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें एक लंबी लंबी एग्जांपल्स कोट करनी पड़ेंगी, हमारी ड्यूटी है, हम करेंगे। लेकिन अब एक ग्रुप में बैठ के हम ऐसा काम करते हैं वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहां पर हम लेक्चर दे रहे हैं, टाइम कंस्ट्रेंट है, हमारा फोकस ऊपर वाले स्टूडेंट्स भी हैं जो कि मिडल में 3.0 के आसपास आते हैं, वो स्टूडेंट्स भी हैं, फिर लो कैलिबर वाले भी हैं, तो वो मुश्किल हो जाता है। तो ये हमारे ट्रेडिशनल सिस्टम से निकल के स्मार्टर सिस्टम की तरफ जाता है जहां पे हम टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल करते हैं।
1: बिल्कुल।
0: जिसमें सबसे मेजर हमारे पास आ जाती है AI की, हमारे पास क्लाउड की, ये हम ज्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ये जो एक टर्म इस्तेमाल की जाती है कि वन साइज फिट्स ऑल,
1: जी
0: ये है ट्रेडिशनल सिस्टम, एक ही साइज सबको नहीं आ सकता, सबके अपने डिफरेंट साइज अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं। तो एजुकेशन 2.0 पर्सनलाइज एजुकेशन सिस्टम हमें प्रोवाइड करता है कि वो हर स्टूडेंट की जो कैलिबर है वो उसको अंडरस्टैंड करे, उसको अंडरस्टैंड करने के बाद उसके मुताबिक उसको रोड मैप, उसका पाथ प्रोवाइड करे कि आपने यहाँ से कैसे कंटिन्यू करना है।
1: बिल्कुल। अच्छा सर, आपके नज़दीक वो कौन सी बेसिक चेंजेस हैं जो ट्रेडिशनल क्लासरूम को स्मार्ट और टेक्नोलॉजी ड्रिवन लर्निंग एनवायरमेंट में तब्दील कर रही हैं?
0: मैडम, इसमें सबसे पहले तो हमारे पास यही आता है कि हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जो है प्रमोट करना है। हम ऑल दोस पे भी बात करते हैं कि ये शायद हमारे लिए नेगेटिव भी हो सकता है
1: जी।
0: लेकिन हमने इसको प्रमोट करना है और इसके हमने गुड पॉइंट्स, जो हमारे पास प्लस पॉइंट्स हैं, उनके ऊपर हमने बात करनी है, उसको हम यहाँ पे इंटीग्रेट करते हैं। हमारे पास जो क्लाउड है
1: जी,
0: हम उसको प्रमोट करते हैं, हम अपना डाटा क्लाउड पे रखते हैं। हमारी बड़ी कॉमन प्रैक्टिस आजकल होती भी जा रही है कि हम स्टूडेंट को ऑनलाइन जो है डाटा पोर्टल्स के थ्रू प्रोवाइड कर रहे हैं, LMS हम यूज कर रहे हैं, जिससे फायदा ये होता है कि स्टूडेंट दुनिया में कहीं पर भी है, घर पे है, हॉस्टल में है, क्लासरूम में है, कैंपस में किसी जगह पे बैठा हुआ है, तो वो अपने उस डाटा को, नोट्स को वहां से क्या कर सकता है,
1: एक्सेस
0: कर सकता है। तो ये जो चीज है ना, हमें अपने हमारे बनता है कि हम अपने ट्रेडिशनल क्लासरूम को स्मार्टर बनाने के लिए AI टूल्स का इस्तेमाल करें, क्लाउड का इस्तेमाल करें, डेटा एनालाइजर्स जो है टूल्स वो इस्तेमाल करें, और LMS जो कि आजकल हम कॉमनली यूज कर भी रहे हैं।
1: सर, अभी आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जिक्र किया, LMS का जिक्र किया, तो सर एजुकेशन 2.0 को कामयाब बनाने में AI, वर्चुअल रियलिटी, LMS और डेटा एनालिटिक्स जैसी टेक्नोलॉजी किस हद तक अहम किरदार अदा कर रही हैं?
0: मैम, AI तो उसमें बहुत इम्पोर्टेंट है। उसमें सबसे मेन बात ही ये आती है कि जब हम AI के ऊपर बात करते हैं तो स्टूडेंट ने क्या करना है, उसको पर्सनलाइज पाथ के तौर पे उसको यूज करना है। स्टूडेंट एक प्रॉब्लम है वो उसको देगा, AI उसका आंसर करेगा, आंसर करने के बाद साथ ही AI का दूसरा स्टेप आ जाएगा, वो क्या है, उसकी असेसमेंट।
1: बिल्कुल।
0: जो कि हमारे नॉर्मल सिस्टम है उसमें क्या होता है, हमारे पास एक दफा हमने टीच किया, पढ़ाने के बाद हमने एक टाइम पे क्विज ले लिया, असाइनमेंट ले लिया, एग्जाम ले लिया। जबकि जो AI टूल्स में होता है ना, उसकी इंपॉर्टेंस यहाँ से इंक्रीज होती है कि उसने क्या करना है, आपको एक चीज एक्सप्लेन की और साथ ही उसका क्विज कंडक्ट किया, क्विज कंडक्ट करके रियल टाइम फीडबैक मिलेगा।
1: बिल्कुल।
0: और रियल टाइम फीडबैक के ऊपर आपकी जो स्ट्रेंथ्स हैं, आपकी जो वीकनेस हैं, वो निकल के सामने आएंगी। जब वो निकल के सामने आएंगी तो वो उसके मुताबिक आपका साथ ही नेक्स्ट पाथ चेंज कर देगा।
1: बिल्कुल।
0: अब इसमें आपने एक ही इम्पोर्टेंस पे हम अगर अगले पॉइंट की तरफ देखें तो वो हमारे पास क्या है, एक तो हो गया उसका डेडिकेटेड पाथ उसको मिलेगा, दूसरा इसमें ये आता है 24/7 अवेलेबिलिटी। हम टीचर्स हैं, हम क्लासरूम में कैंपस में अवेलेबल हैं, या स्टूडेंट हमें पोर्टल्स के थ्रू, LMS के थ्रू या ईमेल्स के थ्रू हमें जो है ना कॉन्टेक्ट करते हैं। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट है, नेक्स्ट डे एग्जाम है, उसने रात को लेट नाइट स्टडी करनी है, अब रात को 1 बजे का टाइम, 2 बजे का टाइम, उसको हेल्प चाहिए, कहाँ से मिलेगी, AI से मिलेगी। वो अपना प्रॉब्लम है वो वहां पे शेयर करेगा, उसको साथ ही सोल्यूशन मिलेगा, वो उसके ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन करेगा, उसका सोल्यूशन मिलेगा, फिर उसका नेक्स्ट, वो चेन ऑफ क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो हर क्वेश्चन के ऊपर AI का जो आंसर है, एक तो ज्यादा स्पेसिफिक होता जाता है, सेकेंडली वो हमारे जो है उस चीज को अंडरस्टैंड कर रहा होता है कि हम पूछना क्या चाह रहे हैं, वो हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक ही हमें एक्सप्लेन करेगा।
1: बिल्कुल। लिसनर्स, वक्त हुआ जाता है एक छोटी सी म्यूजिकल ब्रेक का, हमारे साथ रहें, सुनते रहें FM 92.6 UCP की दुनिया।

0: If you want to stay connected to the latest updates of your country, stay connected to University of Central Punjab FM 92.6 UCP Ki Duniya.
1: वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं FM 92.6 यूसीपी की दुनिया। लिसनर्स, ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे एजुकेशन 2.0 और फ्यूचर ऑफ लर्निंग के बारे में, और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सर मोहम्मद बासित अली गिलानी साहब, जिन्होंने हमें बड़ी तफसील से बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्चुअल रियलिटी और LMS किस तरह एजुकेशन 2.0 में अपना रोल प्ले कर रहे हैं। अपनी गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाते हैं। सर, कुछ लोगों का ख्याल है कि AI एक दिन टीचर्स को रिप्लेस कर देगी। क्या आप समझते हैं कि टेक्नोलॉजी टीचर्स का मुतबादल बन सकती है या उनके किरदार को मजीद मजबूत करेगी?
2: नहीं मैडम, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लोगों का मानना है कि AI आने से बहुत सारी जॉब्स चली जाएंगी, जिसमें हम टीचर्स भी हैं।
1: बिल्कुल
2: ऐसा नहीं होने वाला। AI के साथ टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले से ज्यादा हो गई है, कम नहीं हुई ना खत्म होगी, कभी खत्म नहीं होगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा इस तरह से हुई है कि जब स्टूडेंट्स को हमने AI को यूज करने को प्रेफर करने को कहना है, क्या प्रेफर है, क्या आप इस्तेमाल करो, लेकिन हमने साथ उनका इस्तेमाल का सही तरीका भी बताना है, जिसमें देखें टीचर ने उसको गाइड भी करना है, टीचर ने उसको मोटिवेट भी करना है। क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो वाला पार्ट कभी खत्म नहीं होने वाला।
1: बिल्कुल,
2: तो यहाँ पर टीचर का जो पार्ट है वो पहले से कहीं ज्यादा निकल के सामने आएगा।
1: बिल्कुल। अच्छा सर, पर्सनलाइज्ड लर्निंग का कॉन्सेप्ट आज बहुत मकबूल हो रहा है, ये ट्रेडिशनल वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच से किस तरह मुख्तलिफ है और स्टूडेंट को क्या फायदा पहुंचता है?
2: मैम, जैसे हमारा एजुकेशन 2.0 का जो मेन फोकस है वो इस पर ही है, पर्सनलाइज्ड पाथ।
1: बिल्कुल।
2: इसमें जैसे रोड मैप होते हैं हमारे पास, जो है ना इसके अंदर गाइडलाइंस तैयार की जाती हैं। अब स्टूडेंट है, वो टॉपिक समझना चाह रहा है, वो समझेगा। अब वही जो चीज एक चेन ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं, वो उसके ऊपर जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होना है वो AI ने उसको असेस करने के बाद देना है। अब वो स्टूडेंट कहता है मुझे समझ में नहीं आया, उसकी असेसमेंट होगी, उसका फीडबैक आ गया। अगर फीडबैक बहुत अच्छा है वो नेक्स्ट टॉपिक पे जा सकता है, उस टॉपिक की डिटेल डेप्थ में जा सकता है। लेकिन उस फीडबैक से AI ने असेस किया कि नहीं भाई, इसमें अभी वीकनेस है, तो साथ ही क्या करेगा, उस टॉपिक को मजीद टाइम लगा के उसको एक्सप्लेन करेगा ताकि उसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। जब तक उसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी वो आगे वहां से मूव नहीं करेगा। तो एक्सप्लेनेशन कितनी करनी है, कितनी स्ट्रांग करनी है, कितनी वीक करनी है, कितनी डिटेल में जाना है, ये है पर्सनलाइज्ड लर्निंग हमारी।
1: बिल्कुल। अच्छा सर, एजुकेशन 2.0 के दौर में असेसमेंट और एग्जामिनेशन के तरीकों में किस किस्म की चेंजेस देखने को मिल रही हैं?
2: पहले तो ये सब डिजिटल हो जाएगा।
1: बिल्कुल।
2: ये हमारे जो है हमारे AI टूल्स क्वेश्चंस भी क्रिएट करेंगे, वो हमारे लिए जो है उसको कंडक्ट भी करवाएंगे, उसकी असेसमेंट भी होगी, उसका फीडबैक भी आएगा, और ये सब तो एकदम से ऑनलाइन हो रहा होगा।
1: सर, चेकिंग भी AI के थ्रू ही होगी?
2: AI के थ्रू होगी। AI के थ्रू में जो मेंटर है, जो टीचर्स, हमारा रोल होगा उसकी मॉनिटरिंग। हम उस सिस्टम को मॉनिटर करेंगे 100% AI पे। अभी हम इस करंट फेज में शिफ्ट नहीं हो रहे, लेकिन फ्यूचर यही है हमारा
1: जी,
2: कि हम उस पे 100% शिफ्ट होंगे। लेकिन करंटली हम इस पे आस्ता आस्ता कैसे मूव कर रहे हैं, AI से क्वेश्चंस भी जनरेट होंगे, उसकी असेसमेंट्स और उसके बाद उसका फीडबैक।
1: सर, अगर हम एजुकेशन 2.0 के ओवरऑल बेनिफिट्स की बात करें तो स्टूडेंट्स, टीचर्स और इंस्टीट्यूशंस के लिए सबसे नुमाया फायदे क्या हैं?
2: इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा टाइम फ्लेक्सिबिलिटी, और दूसरी चीज जो स्टूडेंट है, हम स्टूडेंट ओरिएंटेड हो जाएंगे। हम स्टूडेंट को फोकस कर रहे हैं, अच्छा इसको ज्यादा टाइम देना है।
1: बिल्कुल।
2: इसको कम टाइम देना है, एक कम टाइम में ज्यादा सीख रहा है, एक ज्यादा टाइम लेके उतना ही सीख रहा है। तो एक तो हम उसको एक जगह पे टेस्ट नहीं कर रहे, तो इसमें मेन चीज आती यही है कि हमने क्या करना है, टाइम फ्लेक्सिबिलिटी दे दी और जो हमारा लर्निंग स्टाइल है उसको भी फ्लेक्सिबल बना दिया।
1: बिल्कुल। तो सर, अगर एग्जाम्स की कोई डेडलाइन है और अगर हमने उनको फ्लेक्सिबिलिटी दे दी है, तो उसको किस तरह ओवरकम करेंगे?
2: मैम, टाइम जो एग्जाम होता है, सेमेस्टर या एनुअल सिस्टम हमारे पास होते हैं, हम उसके टाइम को नहीं चेंज करेंगे। अब क्लासरूम में हमारे पास 1 आवर का टाइम है, 1.5 आवर का टाइम है, हम उसमें जाते हैं, हमारे पास कंस्ट्रेंट्स क्या है, हमने अटेंडेंस भी मार्क करनी है, हमने जो है स्टूडेंट्स की जो क्यूरीज हैं उनको भी आंसर करना है।
1: बिल्कुल।
2: लेकिन यहाँ पे जब हम इस सिस्टम को ऑनलाइन या AI टूल्स की मदद से कर रहे हैं, वो टाइम फ्लेक्सिबिलिटी हमारे पास आ जाती है।
1: बिल्कुल। अच्छा सर, हर नई टेक्नोलॉजी के साथ कुछ चैलेंजेस भी होते हैं, एजुकेशन 2.0 का को इम्प्लीमेंट करने में सबसे बड़ी रुकावटें क्या हो सकती हैं?
2: मैम, चैलेंजेस तो हर चीज के साथ ही हमें मिलते हैं, इसमें भी हमें चैलेंजेस मिलेंगे। लाइक अभी हम एक अभी भी देख रहे हैं करंट फेज के अंदर, कि हम स्टूडेंट को जब कोई टास्क देते हैं, असाइनमेंट देते हैं, स्टूडेंट उसको समझने की बजाय क्या करता है, AIT से अपना सोल्यूशन निकालता है और हमें सबमिट करवा देता है। हम फिर उसके वाइवर्स कंडक्ट करते हैं। एक टाइम पे वाइवर्स नहीं थे, अब यहाँ पे वाइवर्स आ गए। अब ये जो वाइवर्स हैं ये क्यों है? ये टीचर को एक मेंटर बना दे जिसमें वो क्या कर रहा है, मॉनिटरिंग वाला काम ज्यादा हो गया है। तो वो आपके पहले क्वेश्चन से भी आता है कि यहाँ पे क्या है, टीचर का रोल पहले से ज्यादा हो गया। तो हमने स्टूडेंट को सही तरीका समझाना है कि आप AI को इस्तेमाल कैसे करो ताकि ये वाले जो चैलेंजेस हमें या इसके ड्रॉबैक्स नजर आते हैं ये कम हो जाए।
1: लिसनर्स, वक्त हुआ चाहता है एक छोटी सी म्यूजिकल ब्रेक का। हमारे साथ रहें, सुनते रहें FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

0: आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCP की दुनिया।
1: वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं FM 92.6 यूसीपी की दुनिया। लिसनर्स, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे एजुकेशन 2.0 और फ्यूचर ऑफ लर्निंग के बारे में, और इस अहम मौजू पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सर बासत अली गिलानी साहब, जिन्होंने हमें बड़ी तफसील से बताया कि एजुकेशन 2.0 और ट्रेडिशनल एजुकेशन में क्या डिफरेंस है, AI और LMS का क्या रोल है एजुकेशन 2.0 में, और किस तरह असेसमेंट्स और एग्जामिनेशन में तब्दीली लेके आ रहा है एजुकेशन 2.0, और किस तरह से हम पर्सनलाइज कर सकते हैं हर स्टूडेंट के कैलिबर के अकॉर्डिंग। उसके बाद उन्होंने बड़ी तफसील से बताया कि इसके क्या चैलेंजेस हैं और क्या बेनिफिट्स हैं। अपनी गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाते हैं। सर, अगर हम अगले 10 सालों के क्लासरूम्स का तसव्वुर करें तो आपके ख्याल में फ्यूचर क्लासरूम्स किस तरह के होंगे?
2: मैडम, ये जो आने वाले सालों में फ्यूचर में हमारे पास क्लासरूम्स होंगे, ये हाइब्रिड मॉडल पे चलेंगे। टीचर वहाँ पर है तो वो सिस्टम भी साथ चलेगा, लेकिन हमारे पास हाइब्रिड मॉडल में हम डिजिटल लर्निंग को ज्यादा प्रमोट कर रहे होंगे। उसमें हमारे पास स्मार्ट बोर्ड्स, उसमें हमारे पास AR VR सिमुलेशन हमारे पास होंगी, इसमें हमारे पास AI टूल्स बहुत ज्यादा कॉमन होना शुरू हो जाएंगे। फिर क्लासरूम्स को हम कनेक्ट करते हैं इंटरनेशनली दूसरे ग्लोबल स्टूडेंट्स के साथ, ताकि उनकी वहाँ पे भी इंटरेक्शन जो है साथ साथ कम्युनिकेशन होती रहे।
1: बिल्कुल सर, स्टूडेंट एंगेजमेंट और मोटिवेशन को बरकरार रखना एक चैलेंज है। एजुकेशन 2.0 किस तरह लर्निंग को ज्यादा इंटरैक्टिव और दिलचस्प बनाता है? वैसे तो आपने अभी ये बताया भी है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप इसको मजीद एलैबोरेट कर दें।
2: मैम, ह्यूमन साइकी एक है कि जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन या विजुअल उसको मिलते हैं वो उससे बहुत जल्दी पिक करता है, और जब हम यहाँ पे कंप्यूटराइज या डिजिटल लर्निंग की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे विजुअल रिप्रेजेंटेशन बहुत इस्तेमाल की जा रही होती है।
1: बिल्कुल,
2: तो उसमें हमारे पास यही है कि हम मोटिवेशन यहाँ पे जो सिमुलेशंस के थ्रू, गेमिफाइड लर्निंग एनवायरनमेंट के थ्रू विजुअल कंटेंट प्रोवाइड करेंगे, ताकि स्टूडेंट्स जो है सब सुनते ही नहीं बल्कि एक्टिवली पार्टिसिपेट भी करते रहें। AI उनके इंटरेस्ट के मुताबिक कंटेंट जनरेट करेगा, ये इसका मेन पर्पस है कि AI ने हमें प्रोवाइड ही वो करना है जो कि एक्चुअली में हमारे लिए ही बनाया गया होगा, तो हमारा इंटरेस्ट वहाँ पे कभी भी लूज नहीं होगा।
1: बिल्कुल सर, पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर मुल्क की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एजुकेशन 2.0 कितना मौसर साबित हो सकता है, और इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए किस तरह की रिक्वायरमेंट्स की जरूरत है?
2: मैम, इससे पहले इसमें तो सबसे पहले जो चीज है ना, वो हमें अपनी कनेक्टिविटी, इंटरनेट कनेक्शंस को स्ट्रॉन्ग करना है,
1: जिनके हालात बहुत बुरे हैं।
2: हमारे गांव देहात में देखें, आज भी स्टूडेंट्स को ये चैलेंज देखने को मिलता है कि हमारे कोविड आ गया या कोई और सिचुएशंस के अंदर हमारी क्लासेस अगर ऑनलाइन जा रही हैं, तो वहां पर हम क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट्स को ऑनलाइन प्रोवाइड कर रहे हैं लेक्चर्स, नोट्स, लेकिन स्टूडेंट तक वो पहुंच नहीं रहे, उसमें इंटरनेट है। तो पाकिस्तान में रहते हुए अगर पाकिस्तान के लिहाज से बात की जाए तो उसमें AI टूल्स को कॉमन बनाना, एक तो उनकी फी, उनकी जो है वो या तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं वो उसमें अकोमोडेट करके उनको स्टूडेंट अकाउंट्स क्रिएट करके दें, या तो ये जो प्रोवाइडर्स हैं वही उनकी फी को स्टूडेंट्स के लिए मिनिमम कर दें जो कि होती भी है, या तो उसको फ्री करें।
1: बिल्कुल,
2: साथ में इंटरनेट कनेक्टिविटी, ये सबसे इम्पोर्टेंट होगा पाकिस्तान में रहते हुए, वो भी ऐसे एरियाज में, गांव देहात वगैरह में जहाँ पे इसकी जरूरत ज्यादा है।
1: सर, फ्यूचर में स्टूडेंट्स को सिर्फ एकेडमिक नॉलेज ही नहीं बल्कि मुख्तलिफ स्किल्स की भी जरूरत होगी, आपके नजदीक कौन सी कॉम्पिटेंसीज सबसे ज्यादा अहमियत रखती हैं?
2: स्टूडेंट्स को डिजिटल लिटरेसी और प्रॉब्लम जो सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग है, इसकी ज्यादा जरूरत है। आजकल सब हमारे कंप्यूटर साइंस फील्ड में नहीं, जैसे हम देखते हैं हमारे पास कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स हैं, उनमें भी हमारे पास प्री मेडिकल वाले बच्चे आ रहे हैं।
1: बिल्कुल,
2: उनको वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट ही चलाना नहीं आता, कि फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट को असाइनमेंट जमा करवानी है उसको नहीं आता। दूसरी चीज, वो 8th सेमेस्टर तक पहुंचने के बाद भी उसको वर्ड पे काम करना नहीं आ रहा, उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आ गई, उसको डेवलपमेंट आ गई। यहां से स्टार्ट होता है कि हम अपने बेसिक एजुकेशन सिस्टम में, जो हमारा स्कूल सिस्टम है, वहां पे बच्चों को डिजिटल जो है ना एजुकेशन प्रोवाइड करें, उनको डिफरेंट टूल्स सिखाएं। AI को अगर यूज करना है तो AI के अंदर जो प्रॉम्प्ट होता है, प्रॉम्प्ट को इस्तेमाल करना हम उनको सिखाएं।
1: बिल्कुल
2: ठीक है, कि अपने सही प्रॉम्प्ट कैसे करना है, जितना ज्यादा एक्यूरेट आपका प्रॉम्प्ट होगा उतने बेहतर आपके पास आपके रिजल्ट्स आएंगे।
1: बिल्कुल सर, ये तो हो गया स्टूडेंट्स के लिए। सर, अगर हम टीचर्स की बात करें तो टीचर्स के लिए कौन सी स्किल्स को सीखना या अपने आप को इवॉल्व करना किस हद तक जरूरी है?
2: आपने टीचर्स की ट्रेनिंग और टीचर्स के रोल की बात की है, देखें इसमें टीचर्स की ट्रेनिंग भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। हम कंप्यूटर साइंस टीचर से हट के बात करें तो एजुकेशन सिस्टम यहाँ पे खत्म नहीं होता। हमारे पास लाइफ साइंसेज वाले भी आते हैं, लिटरेचर वाले भी आते हैं, हमारे पास आर्ट्स के टीचर्स भी आते हैं, तो ये उनके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उन चीजों को अडॉप्ट करें। जब तक टीचर्स खुद अडॉप्ट नहीं करेंगे वो आगे बच्चों को सिखाएंगे कैसे, उनको कैसे मोटिवेट करेंगे कि उन्होंने उसका यूज कैसे करना है, और यूज नहीं ठीक तरीके से यूज कैसे करना है। तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि टीचर्स की अपनी डिजिटल टूल्स के ऊपर, AI टूल्स के ऊपर उनकी ट्रेनिंग हो, ताकि वो आगे जाके स्टूडेंट्स को गाइड कर सकें कि उसको इस्तेमाल से कैसे करना है।
1: अच्छा सर, एक आखिरी सवाल, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का टाइम लिमिटेड है। सर, आप एजुकेशन 2.0 को फ्यूचर में किस नज़र से देखते हैं? क्या ये एक टेम्परेरी ट्रेंड है या एजुकेशन का फ्यूचर इसी मॉडल से वाबस्ता है?
2: फ्यूचर में जो AI है ना, वो AI ट्यूटर की तरह हर स्टूडेंट को अवेलेबल होगा। वर्चुअल रियलिटी क्लासरूम कॉमन होगी, उसके अंदर हमारे पास जो है कम्प्लीटली लर्निंग एनवायरमेंट होगा जो कि पर्सनलाइज्ड हो जाएगा। एजुकेशन 2.0 में पर्सनलाइज पे हम बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। एजुकेशन जो वैसे भी जो है एक प्रोसेस है, वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है, कभी खत्म होने वाला नहीं होता। तो कंक्लूजन हमारे पास यही है कि ये फ्यूचर की टेक्नोलॉजी है जिसमें हम टीचिंग को कंबाइन किया है विद हमारे स्मार्ट सिस्टम, जो कि इसको एजुकेशन का एक इकोसिस्टम बना देते हैं। तो ये हमारे पास एसेसिबल भी है, फ्लेक्सिबल भी है, इफेक्टिव भी है, और हमारा मकसद हरगिज ट्रेडिशनल सिस्टम को खत्म करना नहीं है, बल्कि उसको मॉडर्न एज के मुताबिक अपग्रेड करना है।
1: बिल्कुल। लिसनर्स, हमारे प्रोग्राम के इख्तितामी लम्हात आ चुके हैं। हम अपने ऑनरेबल गेस्ट सर बासित अली गिलानी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने हमें अपना कीमती वक्त दिया।
2: शुक्रिया मैडम आपका कि आपने ये मौका दिया हमें कि हम आए और अपना एक्सपीरियंस कुछ बच्चों के साथ, लोगों के साथ शेयर करें।
1: बहुत शुक्रिया। लिसनर्स, आज की गुफ्तगू से ये बात वाजिया होती है कि एजुकेशन 2.0 सिर्फ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं, बल्कि सोच, सीखने और सिखाने के अंदाज में एक बुनियादी तब्दीली का नाम है। इसका मकसद तालीम को ज्यादा इंक्लूसिव, फ्लेक्सिबल और लर्नर सेंटर्ड बनाना है, ताकि हर फर्द अपनी सलाहियतों के मुताबिक तरक्की कर सके। टेक्नोलॉजी इंसानी रहनुमाई का बदल नहीं, बल्कि उसकी मददगार है। उम्मीद है कि हमारा आने वाला एजुकेशनल सिस्टम सिर्फ डिग्रीज ही नहीं देगा, बल्कि मुस्तकबिल के चैलेंजेस का मुकाबला करने की सलाहियत भी फराहम करेगा। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते इसी वक्त और इसी प्रोग्राम में। तब तक के लिए सुनते रहें FM 92.6 यूसुफ की दुनिया। अल्लाह।

नशा न परेशानियां खत्म करता है न इसका सरूर हमेशा रहता है। ये एक लम्हे की कमजोरी है जो सारी जिंदगी का रोग बन जाती है। बातला इल्मी जहालत और हमाकत से शुरू होती है और सारे खानदान को तबाह कर देती है। ऐसी कोई खाने पीने लगाने या सरूर दिलवाने वाली अशिया का इस्तेमाल न करें जिसमें नशा हो। वालिदैन, असातिज़ा और दोस्त बच्चों पर नजर रखें। हंसी मजाक में की गई हरकत आपकी सांसें भी खत्म कर सकती है। नशे से इनकार, जिंदगी से प्यार। मंशियात की सरगर्मियों की रोकथाम के लिए हमारी हेल्पलाइन पर राबिता करें।

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Tuning.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCB ki duniya.

when you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

ये कागजी फूल जैसे चेहरे मजाक उड़ाते हैं आदमी का, इन्हें जाके कोई ये बता दे कि मकाम ऊंचा है सादगी का। शहंशाह गजल की आवाज हो और इतनी खूबसूरती शायरी हो तो दिल कैसे ना इसकी तरफ खींचा जाए। बिल्कुल मेरा दिल, कहते हैं ना कि मौसीकी जो होती है उसकी भी एक रूह होती है। मौसीकी ऐसे नहीं बन जाती, म्यूजिक ऐसे नहीं बन जाता, इसके पीछे बहुत सारे हाथ होते हैं, एक मौसीकार होता है। और एक बात मैं अक्सर औकात कहती हूँ कि जैसे एक पेंटर होता है ना, एक तस्वीर बनाने वाला होता है, एक फनकार होता है, वो अपनी तस्वीर को, अपनी पेंटिंग को कैनवस पे बनाता है, लेकिन एक मौसीकार क्या करता है? एक मौसीकार जो अपनी मौसीकी तरतीब देता है वो खामोशी पे देता है। अब मेरे सुनने वाले कहेंगे, अरे ये क्या बोल रही है, खामोशी पे, खामोशी पे कैसे तरतीब दे सकता है? जनाब, हमारी खामोशी दरअसल बहुत सारे जज्बों का, बहुत सारे लफ्ज़ों का मजमूआ होती है, और शायद कुछ ऐसे लम्हात होते हैं जिसमें वो अल्फाज, वो लम्हात, वो जज्बात जो हैं वो घुट जाते हैं, बन जाते हैं, हम नहीं कह पाते। तो एक मौसीकार की यही तो खासियत होती है कि एक शायर उन आवाज़ों को, उन लफ्ज़ों को, उन जज्बातों को एक पैरहन में लाता है, एक लड़ी में पिरोता है, और फिर क्या होता है, फिर मौसीकार आता है। मौसीकार फिर ऐसी मौसीकी डालता है, ऐसी मौसीकी तरतीब देता है कि उस बेजान शायरी में रूह भर देता है। अब जैसे इतनी खूबसूरत गज़ल थी ये कागज़ी फूल जैसे चेहरे, तो इसमें जो वज़न भरा, जो रूह एक डाली गई, वो एक मौसीकार ने डाली, वो एक शायर ने डाली, और वो जिनकी आवाज़ है शहनशाह गज़ल, मेहदी हसन ने डाली। तो जब मैं और आप मौसीकी सुनते हैं तो ज़रा गौर कीजिएगा कि हम एक चीज़ जब सुन लेते हैं ना, तो हम उसको बाकायदा महसूस करते हैं, हम उसके अल्फाज को, हम उसकी मौसीकी को अपनी सिचुएशन से रिलेट करते हैं। हमें होता है कि हाँ, इसने ये बोला, उसने वो बोला, जो उन्होंने कहा है, जो वो बोल रहे होते हैं, जो गाने के लिरिक्स होते हैं, जो अल्फाज होते हैं, वो हम पे असर कर रहे होते हैं। क्यों कर रहे होते हैं? क्योंकि इनकी भी एक रूह होती है, मौसीकी की भी एक रूह होती है। तो जनाब, मौसीकी की तो बात हो गई, लेकिन यहाँ पे मुझे एक और बात भी याद आई, मौसीकी से ही एक रिलेटेड है, कि गाना, गाना जिसे हम कहते हैं, गाना एक वर्ड है, और गाना एक आर्ट है, हर कोई उठ के गा नहीं सकता। मेरे और आप जैसे लोग जिन्होंने कभी ज़िंदगी में सीखा ना हो, जिन्हें पता ही ना हो कि सारे गा मापादानी सा क्या होता है, जिन्हें पता ही ना हो कि सुर क्या होते हैं, ताल क्या होती है, जिन्हें कुछ ना पता हो, तो जना वो सिंगिंग नहीं कर सकते। क्योंकि गाना जो वर्ड है ना, वो ये कहता है कि अगर तुम्हें गाना आता है तो गाओ, अगर नहीं आता तो गा ना, मतलब गा ना, मत गाओ। तो ये सिंगिंग आसान काम नहीं है, इसी तरह से ज़िंदगी भी है जनाब, आसान नहीं है, बड़ी मुश्किल है, लेकिन इसको आसान बनाया जा सकता है। कैसे? मैं बताती हूँ, ज़िंदगी आसान हम बना सकते हैं, बहुत कुछ बर्दाश्त करके, बहुत कुछ झेल के, थोड़ा सा सब्र करके। जब आप सब्र करने लग जाते हो ना, तो अल्लाह आपको आपके सब्र का फल देता है, और ऐसा देता है कि जनाब यकीन मानिए, उस सब्र से काफ़ी ज़्यादा होता है जो आपने किया होता है। और जब आप ये सोच लेते हो कि मैंने सब्र करना है, बर्दाश्त करना है, तो आप कर लेते हो। लेकिन जब आप यही नहीं सोचते कि मैंने सब्र करना है, बर्दाश्त करना है, तो कैसे करोगे? सोचने वाली बात है ना, तो ज़रा सोचिएगा। तो हम सोच तो रहे हैं, लेकिन एक चीज़ जो हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा है, वो हमसे मुंसलिक है, हमसे रिलेटेड है, एंड दैट इज़ आवर बिहेवियर, हमारा रवैया, हमारा इखलाक। हमारा रवैया जो है वो किसी के दिल में हमारे लिए मोहब्बत डाल सकता है, हमारा रवैया किसी के दिल में हमारे लिए नफ़रत डाल सकता है। बात सिर्फ रवैयों की है, रवैयों को ठीक कर लीजिए, ज़िंदगी खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। लेकिन ज़िंदगी को कहते हैं
کہ محبت ضروری ہوتی ہے. جیسے کہ نسیم بیگم نے کہا تھا, محبت کے دم سے یہ دنیا ہنسی ہے, محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے. آئیے سنتے ہیں, ابھی واپس آتے ہیں.

मोहब्बत के दम से ये दुनिया हंसी है, मोहब्बत नहीं तो कुछ भी नहीं है। ये खूबसूरत और जैसे कहते ना मशहूर कुन आवाज़ थी नसीम बेगम की। नसीम बेगम को बिछड़े हुए हमसे कई साल गुजर गए हैं, लेकिन उनकी आवाज़ आज भी हमारे दिलों में रस खोलती है। आज भी हमारे दिलों के अंदर वो मुकीत है, कैद है। तो जनाब, जो मोहब्बत की बात होती है, कितनी प्यारे वर्ड से इस सॉन्ग के कि मोहब्बत के दम से ये दुनिया हंसी है, मोहब्बत नहीं तो कुछ भी नहीं है। ये पाकिस्तान की एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म परिस्तान से लिया गया सॉन्ग है और ये पिक्चराइज हुआ था नीलो बेगम पे। आप सब में से कौन कौन जानता है नीलो बेगम के बारे में? वेल, आई एम श्योर कि आप सभी जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बताती जाती हूँ कि नीलो बेगम अदाकार शान की वालिदा थी और इसके अलावा वो रियाज शाहिद की शरीक हयाती। रियाज शाहिद जो हैं वो शान के फादर हैं और नीलू बेगम ने बहुत ही अच्छी अच्छी मूवीज़ में काम किया है, जैसे इनकी एक फिल्म है जरका। अरे क्या बात करते हैं, इतनी कोई अमेजिंग मूवी है कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैं सच बताऊं तो आई रिमेम्बर कि जब मैंने ये मूवी देखी थी तो मैं उनकी एक्टिंग देख के बस हैरान हो गए थे। माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरती से उन्होंने जरका का जो करेक्टर था वो उस मूवी में निभाया था। और उस मूवी का एक सॉन्ग है जो मैं अक्सर अपने दियारे गज़ल में शामिल करती रहती हूँ, वो है रक्स जंजीर पहन कर भी किया जाता है। मेहदी हसन की आवाज़ में है वो सॉन्ग भी। और यकीन मानिए, उस सॉन्ग में जो नीलो बेगम ने परफॉर्म कर दिया ना, वो बहुत ही आला था। अगर आप सबको मौका मिले तो ये सॉन्ग ज़रूर सुनिएगा। आगा तालिश भी इसी सॉन्ग में मौजूद है, यानी ये सॉन्ग जो पिक्चराइज हुआ था वो नीलो बेगम पे, आगा तालिश और एजाज साहिब पे पिक्चराइज हुआ था। अब जब नीलो बेगम ये सॉन्ग पिक्चराइज करवा रही थी तो उन्होंने इतनी कोई रियल एक्टिंग की थी कि जब मैंने ये सॉन्ग सुना था तो यकीन मानिए मैं सिर्फ सॉन्ग को सुन के मूवी देखने गई थी। तो फिर ऐसा हुआ कि आगा तालिश से इंटरव्यू लिया गया और उनसे पूछा गया कि कोई ऐसे यादगार मूवीज़ के सीन जो आपको कभी फरामोश नहीं कर सकें आप और आपको हमेशा याद रहे हों, तो उन्होंने कहा था कि ऐसे तो बहुत सारे वाक़यात हैं, लेकिन एक वाक़या जो मुझे बेहद याद रहता है वो ये रहता है कि जरका मूवी में नीलो बेगम ने इसी सॉन्ग यानी रक्स जंजीर पहन कर भी किया जाता है, उसमें जो उन्होंने परफॉर्म किया था ना, वो उन्होंने बिल्कुल इतना हकीकत से करीब तर किया था। और वो कहते हैं कि जो एक बीच में सीन आता है कि आगा तालिश को उन्हें सिगार लगाना होता है, तो वो कहते हैं कि वो सीन और वो इतनी खूबसूरती से उन्होंने वो सॉन्ग किया, इतनी खूबसूरती से उन्होंने किरदार निभाया कि हम सब, जिसे कहते हैं ना कि एट द एंड ऑफ द सॉन्ग हम सब रोने लग गए थे और हम जिसे कहते हैं ना कि एक सकते में आ गए थे। हमें बहुत उन्होंने इम्प्रेस किया था। तो जनाब, ये एक बड़े फनकार की पहचान होती है, ये एक लेजेंड की पहचान होती है। और हमारा माजी ऐसे लेजेंड से, ऐसे फनकारों से, ऐसे गुलकारों से, ऐसे लोगों से भरा पड़ा है, हम देखते नहीं हैं। तो हमारा प्रोग्राम तिहारे गज़ल उन सभी यादों की यादें ताज़ा करने के लिए है। हम बात कर रहे थे इस सॉन्ग की जो मोहब्बत के दम से है, और जब हमने अपना जो हम जब सॉन्ग की तरफ गए थे तो बात भी मोहब्बत की हो रहे थे, ज़िंदगी की हो रहे थे कि मोहब्बत के बगैर ज़िंदगी अधूरी सी लगती है। ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में कुछ कमी है, जैसे एक सालन होता है ना, और सालन में जब तक आप नमक नहीं डालो आपको लगता है कि अरे नहीं, ये तो नामुकम्मल है। जैसे चाय जो होती है उसमें पत्ती ना डालें तो वो बनती नहीं है, उसका वो रंग नहीं आता, वो टेस्ट नहीं आता। हम तो भाई कड़क चाय पीते हैं, वो भी तेज़ पत्ती वाली। जनाब, ज़िंदगी भी ऐसी है, इसमें तेज़ पत्ती भी चाहिए होती है, थोड़ी सी चीनी भी चाहिए होती है, थोड़ा सा नमक भी चाहिए होता है, एक दो इलायची के दाने भी चाहिए होते हैं। तो ये सब क्या है? अब जो तेज़ पत्ती है ना, वो तो मोहब्बत है, वो तो आप मान लीजिए कि मोहब्बत है, कि मोहब्बत के बगैर तो हम इंसान ही नहीं हैं, एहसास के बगैर भी हम इंसान नहीं हैं। और मोहब्बत और एहसास जो है ना, वो एक दूसरे से मुंसलिक हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे हम और आप
किस तरह से जुड़े हुए हैं। आप मुझे रेडियो पे सुन रहे हो, आप सिर्फ मेरी आवाज़ सुन रहे हो, आप मुझे नहीं जानते रियल में कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, लेकिन एक रिश्ता है मेरा और आपका, वो आवाज़ों का है। तो जनाब, वो जो चीज़ है वो आवाज़ का रिश्ता है, वो मोहब्बत है आपकी। अगर आप में मोहब्बत ही ना हो तो आप कैसे दूसरे इंसान की तारीफ़ कर सकते हो? अगर आप में मोहब्बत ही ना हो तो आपको कैसे दूसरे की आवाज़ या उसकी बात अच्छी लग सकती है? तो इस बात पे ज़रा सोचिएगा, गौर कीजिएगा कि हम में से कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसके अंदर मोहब्बत ना हो। हम सभी के अंदर मोहब्बत मौजूद है, और ये मोहब्बत ही है जो हमें ज़िंदा रखती है, ये मोहब्बत ही है जो हमें आगे बढ़ाती है। ज़िंदगी में छोटी छोटी मुश्किलात आती हैं, छोटे छोटे दुराहे आते हैं, ऐसे दुराहे आते हैं कि बस हमें लगता है कि अब सब कुछ ख़त्म हो रहा है, हम हिम्मत हार देते हैं, फिर कोई आता है, हाथ थामता है और हमें थोड़ा सा आगे ले जाता है, हम फिर उस पॉइंट पर रुक जाते हैं, फिर कोई आता है, फिर थोड़ा सहारा देता है, फिर हम आगे चले जाते हैं। तो वो लोग जो आते हैं जिन्हें हमसे कोई गर्ज नहीं होती, हम उन्हें कोई फ़ायदा नहीं दे सकते, ना दुनियावी का, ना दुनिया का, ना दीन का, किसी चीज़ का भी हम उन्हें फ़ायदा नहीं दे सकते। लेकिन वो मदद कर जाते हैं, चाहे दो लफ्ज़ों से ही मदद कर दे। तो मोहब्बत तो हम सब के अंदर मौजूद है, और मोहब्बत ही ज़िंदगी है। जैसे कि नसीम बेगम ने भी, जैसे हम सुन रहे थे उनको कि मोहब्बत के दम से ये दुनिया हंसी है, मोहब्बत नहीं तो कुछ भी नहीं है। जिस इंसान के अंदर मोहब्बत ख़त्म हो जाती है, एहसास ख़त्म हो जाते हैं, उसमें इंसानियत बाकी नहीं रहती। क्योंकि इशफाक अहमद साहब ने बड़ी प्यारी बात की थी, उन्होंने कहा था कि इंसान के मरने पे इतना अफसोस नहीं होता उन्हें जितना कि अफसोस होता है उन्हें एहसास के मर जाने पे। क्योंकि जब एक इंसान की डेथ होती है तो उसका जो किरदार होता है वो इस दुनिया से ख़त्म हो जाता है, लेकिन जब एहसास ख़त्म हो जाते हैं तो इंसानियत ख़त्म हो जाती है। और डरिए, उस वक्त से डरें जब एहसास ख़त्म हो जाए, क्योंकि एहसास ख़त्म हो जाएंगे तो कुछ भी बाकी नहीं रहेगा, नफ़रत आ जाएगी, आप बिल्कुल फीलिंग लेस हो जाएंगे, आपको तो अपने खून के रिश्तों का भी पास नहीं होगा। ये बातें हैं कुछ सोचने वाली, हम और आप सोचते हैं और अब ऐसा करते हैं कि आपको सुनाते हैं अपना नेक्स्ट ट्रैक, और ये मैं नहीं बताऊंगी किसका है, आप सुनिए फिर हम वापस आते हैं।

दिल के हाथों मजबूर हम एक खता कर बैठे, किस्मत में न था मिलना हम मिलने की दुआ कर बैठे। हालात बदल नहीं सकते। अरे क्या खूबसूरत आवाज़ थी, ये खूबसूरत सी आवाज़ थी मलका तरन्नुम नूरजहाँ की, जिनकी आवाज़ हम सुनते हैं तो यकीन मानिए दिलों के तार पर उठते हैं और दिल कहता है कि अरे क्या ही बात है, वाह वाह, इससे अच्छा तो हो ही नहीं सकता, इससे कमाल नहीं हो ही नहीं सकता। तो ये जो सॉन्ग है ये बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि ये पाकिस्तान की एक बहुत ही सुपर हिट मूवी में से लिया गया है। ये मूवी थी लाखों में एक और ये 60s में रिलीज हुई थी, और इस मूवी में मरकजी किरदार निभाए थे शमीम आरा, आगा तालिश, इसके अलावा एजाज साहब थे, और मुझे एक का नाम नहीं याद आ रहा, वो हमारे बहुत ही फेमस एक्टर हैं, वो भी इस मूवी में शामिल थे। और ये जो मूवी थी बेसिकली दो ऐसे मुल्कों के बारे में थी, यानी पाकिस्तान के बारे में थी और हमारे बॉर्डर के पार जो मुल्क है उसके बारे में थी, और दो दिखाया गया है कि कैसे इंसानियत तब भी बाकी थी। तब कुछ ऐसा हुआ कि शमीम आरा की जो है वो एक हिंदू लड़की का किरदार निभा रही थी, और वो एक ऐसी लड़की का किरदार निभा रही थी जो कि अपने फादर से अलग हो जाती हैं, और फिर उनके जो फादर के फ्रेंड होते हैं जो कि पाकिस्तान में होते हैं तो वो उन्हें पालते हैं, उन्हें बड़ा करते हैं, और जो उनके फादर के दोस्त होते हैं जिन्हें वो अपनी बेटी समझ के पालते हैं, उनका अपना बेटा जो है वो दूसरे मुल्क में होता है, वो खो जाता है, वो उन्हें नहीं मिलता। एट द एंड ऑफ द डे वो फिर उनको अपना बेटा मिलता है, फिर शमीम आरा, और मतलब इस तरह से एक बहुत ही खूबसूरत स्टोरी है। आप बिल्कुल फैमिली में बैठ के इसको देख सकते हैं। 60s में ये मूवी रिलीज़ हुई थी और बहुत ही हिट इसका ये सॉन्ग है, और अगर आपको मौका मिले तो ये मूवी ज़रूर देखिएगा। मैं नाम आपको दोबारा बता देती हूँ, इस मूवी का नाम था लाखों में एक, ठीक है जी। और जी बिल्कुल जनाब, इसमें एक और जो मुझे बात बहुत पसंद आई थी कि जो हमारा जो हमारे इलाके हैं जैसे गिलगित बल्तिस्तान है, कश्मीर है, उस चीज़ को दिखाया गया है, उस खूबसूरती को दिखाया गया है, उन इलाकों में इस मूवी की शूटिंग हुई थी। एंड इट वाज रियली अमेजिंग कि हमें पुरानी मूवीज़ में भी कुछ ऐसे सीन्स देखने को मिलते हैं कि जिसे हम कहते हैं कि वाह वाह क्या बात है। तो जनाब अब हम बात करते हैं, अपने टॉपिक पर आते हैं। कि टॉपिक पे आने से पहले एक और मूवी मुझे याद आ रही थी और मैं चाह रही थी कि आपसे मैं वो भी डिस्कस कर लूँ। पाकिस्तान की एक सुपर हिट मूवी और मेरे ख्याल में हम सभी की वो मूवी फेवरेट है, हमारी पसंदीदा है, और वो है हीरांझा। याद आया जी, बिल्कुल। हीरांझा पाकिस्तान की उन मूवीज़ में से एक मूवीज़ है जिसे यकीन मानिए मास्टरपीस कह सकते हैं आप, क्योंकि आई रिमेंबर फिरदौस बेगम ने और एजाज साहब ने जो एक्टिंग उसमें कर दी है ना, कमाल की है। और मुझे याद है जब मैं छोटी सी होती थी तो मुझे लगता था कि ये जो फिरदौस मैम है और एजाज साहब जो हैं वो रियल में हीरांझा हैं, और आज भी जब मैं इतने सालों बाद उनकी मूवी वही देखती हूँ तो यकीन मानिए वो रियलिटी लगती है। वो सीन्स, वो जिस तरह से उन्होंने सेट लगाया हुआ है, जिस तरह से उन्होंने वो किरदार, कैदो का जो किरदार था, मुझे उन एक्टर का भी नाम नहीं याद आ रहा, लेकिन वो बहुत खूबसूरती से निभाया गया है। उसके अलावा रंगीला साहब ने भी उसमें बड़ी अच्छी एक्टिंग की है। रंगीला साहब को आप जानते हैं कि रंगीला जी हमारे बहुत ही फेमस एक्टर हैं, और इनकी एक मूवी थी रंगीला ही, उनकी एक मूवी थी जो बड़ी हिट रही है, और उसके अलावा भी उनकी बहुत सारी मूवीज़ हैं जिसमें उन्होंने बहुत ही अजीम किरदार निभाए हैं, और उनके यकीन मानिए वो इतनी कोई मज़े की जिसे कहते हैं मज़ाहिया अदाकारी करते थे कि आप बस खो जाते थे। आई रिमेंबर कि उनकी जो मूवी थी रंगीला, उसका एक सॉन्ग था किसने तोड़ा है दिल हुजूर का, आहा क्या ही कमाल का था। अगर आपको मौका मिले तो आप रंगीला मूवी भी जो है वो ज़रूर देखिएगा, आप उससे लुत्फानंदोज़ होंगे और यकीनन आपको बेहद पसंद आएगी। तो जनाब मैंने आपको दो मूवीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन दे दी हैं और आप ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा आज जो मैं बात करना चाह रही थी वो एक किताब मैंने पढ़ी थी और मुझे वो बहुत अच्छी लगी थी, मुस्तनसर हुसैन तारर की वो लिखी हुई किताब है और उसका नाम है जिप्सी। जिप्सी एक ऐसी कहानी है जो हम सभी की ज़िंदगियों में होती है, यानी जिप्सी के किरदार को
مستنصر حسین تارڑ نے اس خوبصورتی سے پرویا ہے, اس خوبصورتی سے بیان کیا ہے کہ میں نے اس کتاب کو پڑھ کے زندگی کو کافی سمجھا ہے. انہوں نے ہمیں بتایا کہ جب ہم بڑے ہو رہے ہوتے ہیں, جب ہم تھوڑی سی جیسے کہتے ہیں نا کہ بانک پن سے نکل رہے ہوتے ہیں, ہمیں نئی نئی چیزیں ہم ڈسکور کر رہے ہوتے ہیں, ہم دنیا کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو ہماری پرسیپشنز کچھ اور ہوتی ہیں, ہمارے آئیڈیاز, ہمارے خیالات کچھ اور ہوتے ہیں, اور ہمارے حالات بھی تب کچھ اور ہوتے ہیں. لیکن ود دا پیسج آف ٹائم ایوری تھنگ چینجڈ, سب کچھ بدل جاتا ہے. ہماری زندگیاں, ہمارے خیالات, ہمارے حالات, ہر چیز بدل جاتی ہے, ہمارے پرسیپشنز بھی چینج ہو جاتے ہیں. ہم جو وہ چیزیں جو بانک پن میں سوچ رہے ہوتے ہیں جب ہم بچے ہوتے ہیں, تب وہ اٹکیلیاں, وہ معصومیاں, وہ سب بدل جاتی ہے, اور ہم زندگی کو حقیقت سے دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں, یعنی ریئلٹی کو سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ بھی ایک ایسی ہی کہانی ہے جو ایک لڑکی پی ہے, مستنصر حسین تارڑ کا یہ ان کی خاصیت ہے کہ وہ سفر نامے بیان کرتے ہیں. ان کا یہ سفر تھا جو میرے خیال سے وہ لندن میں تعلیم حاصل کر رہے تھے, اور پھر لندن میں رہتے ہوئے وہ کسی دوسرے ملک گئے تھے, تو وہاں ان کی ملاقات جپسی سے ہوئی تھی, اور انہوں نے جپسی کے کردار کو اس طرح سے بتایا ہے کہ ہماری زندگیوں میں ایک انسان ایسا ہوتا ہے جو کچھ بھی ہو جائے, زندگی میں کیسے بھی بدلاؤ آ جائے, کیسے بھی تلخیاں آ جائیں, کیسے بھی جیسے کہیں نا آپ کی زندگی عذاب بن جائے, وہ انسان آپ کا ساتھ نہیں چھوڑتا. بے شک وہ انسان آپ کے ساتھ تک ایک سیکرٹ کی طرح ہو, یا بے نام ہو, یا پھر اس کا رشتہ آپ سے ایسا ہو کہ صرف خیالات کا رشتہ ہے, لیکن وہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے, اور جب آپ کو ضرورت ہوتی ہے تو وہ آپ کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہے. ایسے انسان تلاش کرنا بہت مشکل ہے, اگر مل جائے تو جناب انہیں سنبھال کے رکھیے گا. اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ ٹریک سنتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں, مزید آپ سے باتیں کرتے ہیں.

छुप जाओ तारे ओ पादे ओ अंधेर वे असा इस राती नी वेखनी सवेर वे। अरे बहुत ही खूबसूरत आवाज़ थी एक बहुत ही खूबसूरत शख्सियत की, जो बिल्कुल आप आवाज़ सुन रहे थे नसीम बेगम की। और इनकी आवाज़ की मानिए, हमने इनकी आवाज़ में पहला भी गाना सुना है मोहब्बत के दम से दुनिया हंसी है, और अब हम इनकी आवाज़ में एक दूसरा गाना सुन रहे हैं जो मुझे बेहद पसंद है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं जब भी इस सॉन्ग को सुनती हूँ तो आई फील वेरी गुड, क्योंकि ऐसा होता है कि कभी कभार हम उदास हो जाते हैं, हमें ऐसा लगता है कि अरे नहीं ज़िंदगी अब ख़त्म हो गई है, एंड ऐसी जो ख्यालात हैं वो आते रहते हैं। तो कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो मैं इस सॉन्ग के बारे में आपको देती जाती हूँ कि ये सॉन्ग पाकिस्तान की फिल्म, पंजाबी फिल्म लंगोटिया से लिया गया है। लंगोटिया एक बहुत ही प्यारी मूवी थी, और ये सॉन्ग जो है ये पिक्चराइज हुआ था नगमा बेगम पे, जो आजकल भी हमें कई ड्रामास में नज़र आती हैं, और बहुत सारे ड्रामास में उन्होंने बहुत अच्छे किरदार निभाए हुए हैं। इसके अलावा जनाब इस सॉन्ग की जो मौसीकी थी वो तरतीब दी थी बाबा जीएच चिश्ती ने, और इसके अलावा जो शायरी थी जनाब, ये जो आप खूबसूरत सी शायरी सुन रहे थे, ये साहिर लुधियानवी की थी। तो इतने बड़े बड़े नाम जो हैं, जब वो साथ हो जाएं और फिर आवाज़ नसीम बेगम की हो जाए, तो यकीन मानिए इतना खूबसूरत मास्टरपीस तो बन के आना था। आई जस्ट लव दिस सॉन्ग। छुप जाओ तारे ओ पादे ओ अंधेर वे असा इस रात दी नी वेखनी सवेर वे। बोता हो या ते लोग की कहेंगे कि लोग इस सॉन्ग की, मैं थोड़ी सी उर्दू यहाँ पे करना चाहती हूँ, उर्दू तर्जमा, बेसिकली ये पंजाबी में था। इसमें ये कहा गया है कि तारों छुप जाओ और अंधेरा डाल दो, हम नहीं देखना चाहते सुबह का सवेरा, हम नहीं देखना चाहते वो सुबह की चांदनी, सुबह की रोशनी। इसके बाद वो कहती हैं कि क्या होगा अगर मैं यहाँ नहीं रहूँगी तो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या कहेंगे, लोग कहेंगे अरे एक दिन तो हम सभी ने मरना है, और इतना कह के लोग चुप हो जाएंगे, कोई याद भी नहीं करेगा। तो ये बड़े ही प्यारे अंदाज में इस सॉन्ग को गाया गया है, और उतने ही प्यारे अंदाज में इसका पिक्चराइज किया गया है विद अमेजिंग एंड मेसमराइजिंग फीलिंग्स। लेकिन जनाब एक बात, मायूसी नहीं चाहिए, मायूस नहीं होना, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, और हमारे इर्द गिर्द ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमारे लिए बहुत कीमती हैं, जिनके लिए हम बहुत कीमती हैं। जैसे कि इश्फाक अहमद कहते हैं कि हमारी जो ज़िंदगी है ना, वो इस तरह से होती है जैसे एक मिरर होता है ना, या आप ऐसे कह लीजिए कि एक पेंटिंग है आपको बड़ी पसंद आई है, और आप कहते हो कि जनाब मैंने इस पेंटिंग को लेना ही लेना है। लेकिन फिर क्या होता है, आप जब उस पेंटिंग को पास जाके देखते हो उसको, हमारी आदत होती है ना, जब हमें कोई चीज़ पसंद आती है तो फिर ये अच्छी तरह छानबीन कर लेते हैं कि जनाब इसमें कोई, जैसे कहते हैं ना, कोई नुक्स वगैरह तो नहीं है, कोई ख़राबी तो नहीं है। अच्छा ठीक है, अब जब हम नुक्स वगैरह देखते हैं, कोई ख़राबी वगैरह देखते हैं, तो कोई नुक्स निकल आता है गलती से, तो पता है क्या होता है, वो जो नुक्स निकलता है ना, उसकी वजह से हम वो पेंटिंग नहीं लेते, बशर्ते कि हमें बड़ी पसंद हो। ज़िंदगी भी ऐसी है, अगर थोड़ी सी मुश्किल आ जाए, तकलीफ़ आ जाए, तो हम कहते हैं कि बस अब नहीं, हम नहीं चलना आगे, बहुत हो गया, हमसे नहीं बर्दाश्त होता। तो जनाब इस रवैये का जो है वो तब्दील कीजिए, क्योंकि इस तरह के जो रवैये हैं वो मेरे ख्याल में हमारी ज़िंदगी में एक मनफी तासुर पैदा करते हैं, और मनफी तासुर नहीं पैदा होने चाहिए। इसके साथ साथ एक बात जो मुझे कुछ दिन पहले बड़ी पसंद आई थी, और वो इसी तरह से थी कि हम सभी गलतियां करते हैं, मैं गलतियां करती हूँ, आप गलतियां करते हैं, और हमारे इर्द गिर्द हमारे अपने, हमसे रिलेटेड लोग, हमारे कोलीग्स, हम सब गलतियां करते हैं। गलतियां क्या होती हैं, हम जानबूझ के तो नहीं करते, लेकिन हो जाती हैं जब हम समझ नहीं पाते, और ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम प्रॉपर किसी को समझ जाएं, क्योंकि समझना भी एक आर्ट होता है और सुनना भी एक आर्ट होता है। जैसे एक कस्टमर होता है और एक बायर होता है, जो आपका कस्टमर होता है ना, उसको आपने कन्विंस करना होता है, मतलब अगर आप मार्केटर हैं और आप
आप कोई सेल्स पर्सन है, आपने कुछ सेल करना है, अपनी सेल्स को इंक्रीज करना है, तो आपका जो मेन फोकस होता है, आपको जो प्रॉफिट मार्जिन मिल रहा होता है, वो आपको अपने कस्टमर्स से मिल रहा होता है। आपको कन्विंस करना होता है अपने कस्टमर्स को कि जनाब ये हमारी चीज़ है, आप इसको ले लीजिए, इसके ये फ़वाद हैं, इसके ये नुकसानात। नुकसानात भी बताते हैं वो। वो क्यों बताते हैं? उन ऑब्जेक्शंस को, जैसे कहते हैं, उन ऑब्जेक्शंस को कम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए, जो कस्टमर्स के माइंड में होते हैं और कस्टमर्स सोच रहे होते हैं, अच्छा ये तो फ़ायदे बता रहा है, ठीक है, इसमें कोई ना कोई ख़राबी होगी, ये होगा, वो होगा। तो जनाब वो जो सेलर होता है, जो सेल्स पर्सन होता है, वो भी मुकम्मल तरह से कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं कर पाता। कर भी लेगा तो क्या हुआ, एक दो उसकी सेल्स जो हैं वो इंक्रीज होंगी, फिर वो इसी चीज़ आ जाएगी। लेकिन हमारे साथ भी तो यही होता है ना, हम नहीं समझ पाते। हम अपने साथ जो लोग बैठे हुए होते हैं, हम कभी कभार उनको भी नहीं समझ पाते कि वो किन हालात में हैं। तो अगर किसी से गलती हो जाए तो माफ़ कर दीजिए ना, आप जब गलती करते हैं तो माफ़ कर देते हैं ना, तो दूसरों को भी माफ़ कीजिए। माफ़ करना अल्लाह को बहुत पसंद है, और जो माफ़ करता है अल्लाह ताला कहते हैं कि वो उसके दोस्त होते हैं। तो माफ़ कीजिए और सुनिए ये खूबसूरत सा ट्रैक।

0: आप सुन रहे हैं FM 92.6 यूसीपी की दुनिया। यूसीपी की दुनिया
1: मुझे दिल से ना भुलाना, चाहे रोक के ये ज़माना। एक खूबसूरत आवाज़ें आप सुन रहे थे महनाज बेगम और आलमगीर की। और जी बिल्कुल, ये खूबसूरत सी मौसीकी जो आप सुन रहे थे, ये तरतीब दी थी रोबिन घोष ने। रोबिन घोष के सभी गाने जो मैंने सुने हुए हैं, यकीन मानिए उनका एक अपना स्टाइल है। वो सभी अपने, जिसे कहते हैं ना कि हर सॉन्ग जो है वो अलग है और हर सॉन्ग बेहतरीन है। इसी फिल्म, ये जो सॉन्ग आप सुन रहे थे, ये फिल्म आईना से लिया गया था जो 80s में रिलीज हुई थी। नदीम बेग और शबनम मैम ने इसमें मरकजी किरदार निभाए थे। इसके अलावा जनाब, आईना मूवी की ये भी खासियत है कि इसकी जो स्टोरी थी दैट वॉज रियली अमेजिंग। लेकिन ये कि वक्त संभाला नहीं जाता, उसे हम पकड़ भी नहीं सकते और वो भागता जाता है और आगे निकल जाता है और फिर क्या होता है, ख़त्म हो जाता है। जी बिल्कुल, ऐसा ही हुआ। वक्त की रफ्तार हमसे थोड़ा तेज़ थी, थोड़ी सी तेज़ थी हमसे, और वक्त हमारे प्रोग्राम का भी ख़त्म हुआ जाता है। यानी दियार गज़ल का आज का यहाँ पे प्रोग्राम ख़त्म हो जाता है। हम आपसे फिर मिलेंगे अगले हफ्ते सेम चैनल सेम टाइम विद योर सेम आरजे। तो तब तक आप अपना और अपने प्यारों का बहुत से ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। और एक बात कि दूसरों के लिए आसानियाँ बांटें, दूसरों के लिए ऐसे काम कीजिए जो आप चाहते हैं कि आपके साथ भी हों। अल्लाह हाफिज़। और जिसे कहते हैं ना कि याद रखिएगा, भूलिएगा मत। और सुनिए ये खूबसूरत सा ट्रैक, गमे दिल को इन आँखों से झलक जाना भी आता है, माला बेगम की खूबसूरत सी आवाज़ में। और हमें दीजिए इजाज़त।

0: ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए एफएम 92.6 यूसीपी की दुनिया, यूसीपी की दुनिया।
1: 24/7 only on FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

0: when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCP Ki Duniya.
1: ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत. आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6.

www.lucifer.edu.pk FM 92.6 Life Station of the Nation.

www.lucifer.edu.pk FM 92.6 Life Station of the Nation.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP की दुनिया।

www.music.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

सुरौरतान सुरौरतान ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCP की दुनिया।

हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

मौसीकी के सुरौरतान सुरौरतान ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार और तकरार, सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 यूसीबी की दुनिया।

0: Are you tired of feeling lazy and bored? Don't worry. That's why we are here. We are UCP Ki Duniya, FM 92.6.
1: एक नया अंदाज,
2: एक नई सोच,
1: एक नई पहचान,
2: एक नई लगन,
1: UCP में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
2: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिब इल्म के किरदार से।
1: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की,
2: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP नंबर 1।
1: जब मिलती है लगन,
2: मेहनत,
1: कामयाबी और खुलूस,
2: तो बनती है
1: UCP की दुनिया।
2: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
1: सुनते रहिए।

0: की ताजगी का सफर तय कीजिए। यूसीपी की दुनिया के साथ तो सुनते रहिए
1: سيد الأولين والآخرين
0: FM 92.6